0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

करम। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओ, श्रावण मास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है। संपूर्ण गणों के साथ आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। चंडः सर्वगणेशानः शंभूर वदन संभव सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु कांक्षितम्। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। प्रार्थना करें श्रोताओ। पिंगलो गणपः श्रीमान् शिवाशक्त शिव प्रियः आज्ञया शिवयोरेव समे कामं प्रयच्छतु। भगवान शिव में आशक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल, शिव और शिवा की आज्ञा से मेरी और मनोकामना पूर्ण करें। भृंगेशो नाम गणपः शिवाराधन तत्पर प्रयच्छन्तु समे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें।

चाभिरक्षिता यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः उपेन्द्रेन्द्रियमादीनां देवनामंगतक्षकः। हिमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उनके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेन्द्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से मुझे मेरी मनोभिलाषित कामना प्रदान करें। शिवस्यानुचर श्रीमान शिवशासन पालक शिवयो शासना देव समे दिशतु कांक्षितम्। सरस्वती महेशस्य वाक्सरोज समुद्भवा शिवयोः पूजने शक्ता सामे दिशतु कांक्षितम्। महेश्वर के मुख कमंडल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के

0: पूजन में आशक्त रहने वाली सरस्वती देवी, आप भी मेरी मनोकामना परिपूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। संत सुभाषित सुधा, चार वेद षष्ठ शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दिने सुख होत है दुख दिने दुख होए। जिस प्रकार से वेद में, चारों वेद में, शास्त्र में जो मिलता है उसी से सुख को प्राप्त होता है, और जो सुख देता है उसको सुख प्राप्त होता है, और जो दुख देता है उसे दुख ही प्राप्त होता है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हासे जगत प्रीति बहु बात। भगवान नारायण के भजन में जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख को प्राप्त होता है, और जो आनंदित जीवन को भोग प्राप्त करते हैं, वह अति उत्तम होता है। और उसी विषय में कहा गया, जितने लोग भागवत भागवत श्रवण नहीं करते, भागवत ज्ञान को नहीं पाते, विषय भोग में लगा रहते हैं, जो नींद में सोया रहते हैं, प्रभु का नाम नहीं लेते, उसका हंस ही होता है। सभी लोग जीवन में उसका हास्य उड़ाते हैं। जगत प्रीति बहु बात, सब प्रकार के दुख संकट मर्यादा मोह माया के संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जितने लोग हरि के भजन करते हैं उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं, और सब प्रकार के दुख नष्ट हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जिसे गंगा नारी, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस प्रकार से कबीर जी बहुत निर्मल स्वभाव से कहते हैं कि जितने लोग कबीर जी के बात को श्रवण करते हैं वो गंगा नहाते हैं, गंगा में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो कबीर जी के दोहा में प्राप्त होता है। जितने लोग कबीर का पाठन करते हैं मन पवित्र होता है, इंद्रियां पवित्र होता है। जिस प्रकार से मनुष्य स्नान करके अपने को आनंदित प्राप्त करता है, उसी प्रकार से मन भी पवित्र हो जाता है। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवा

वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां वीणाण पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज थर्सडे 27 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए शिव सती को आगे बढ़ाते हैं। तब चित चरे ऊ जो

जसयः भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आई। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अवमाना समुझी जो सती ही भय हो अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया परंतु शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल सब ही हति हटकी तब बोली वचन स क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हतपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुना

हूं, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहां शिवजी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछतावा होगा।

0: भाई, जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश लेने तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट ले, नहीं तो उनका कान मूंद कर वहां से भाग जाए। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

ओम जन ओम तप ओम सत्यम नमो ओम आनंद शांति प्रदाता नमो भू प्राणो हो को प्रदाता नमो हे भुव दुख हरने हारे नमो स्वसुखी भक्त आश्रय तुम्हारे नमो हे मह ब्रह्म आदित्य रूपम नमो हे जन सृष्टि कर्ता अनुपम नमो हे तप सुख नाशक पिता हो नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो सभी हम प्रभो अब

ओम इह प्रियं प्रजयाते समृद्ध्यतामस्मि गृहे गार्हपत्याय जागृहि एनापत्या तन्वंशं श्रीजस्वाधा जीविविदशमा प्रेम की वृद्धि हो यहाँ तो संतान गृहस्थ आश्रम में जागरूक सदा कल्याण पति संग प्रीत सदा करो वृद्ध अवस्था तलक और उत्तम उप

सौधायता पुरवल्म कल्पयत दीवंच पृथिवीं चांतरिक्षमतु स्वा तपसे सत्

फूल जल तरंग में उद्धी परम रचा सकल संसार सूर्य चंद्र पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश प्रकाश विस्तार रीत सत्य से ही तूने संसार को बनाया तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु को लखाया पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को सजाया द्यौ अंतरिक्ष धरनी सब नेम पर टिकाया तू रम रहा सभी में तुझ में सभी समाए ओम शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रद्धेय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती त्वरियाराम भोजन का सादर नमस्ते। वेदों का स्वाध्याय सच्चे अर्थों में जीवन का निर्माण करना है। यजुर्वेद का मंत्र प्रस्तुत है। ओम मनोज्योतिर्जुषता मा यज्ञस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं।

शांति। शब्दार्थ, हे मनुष्य, जूतः मनः, अत्यंत वेगवान मन, अज्ञस्य दिव्य ज्ञान का, जुषताम सेवन करें, बृहस्पतिः विद्वान, इमं यज्ञम तेरे इस जीवन यज्ञ को तनोति संपन्न करें, ज्ञानी लोग इमं इस अरिष्ठम कल्याणकारक यज्ञम जीवन यज्ञ की सम दधातु अच्छी प्रकार देखभाल करें, इह इस शरीर में विश्व देवासह सारी दिव्य शक्तियों इंद्रियों मादयंताम आनंद में रहे, हर्ष और उल्लास युक्त रहे। ओम, हे सर्वरक्षक ईश्वर, आप प्रतिष्ठ उपासक के हृदय में निवास करो। भवार्थ, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। उसकी प्राप्ति के लिए हमारा मन सदा दिव्य ज्ञान का सेवन करता रहे। ज्ञान अधिपति बनकर हम अपने जीवन यज्ञ को संपन्न करें। ज्ञानी लोग हमारी दिनचर्या की देखभाल करते रहें और हमें सुपथ पर चलाते रहें। हमारी इंद्रियों प्रसन्न हो, आनंद और हर्ष में मग्न रहे। इसी स्थिति होने पर जीवात्मा ओम में सर्वरक्षक परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, अथवा परमात्मा उपासक के हृदय में निवास करने लगता है। हमें अपने जीवों को दिव्य बनाते हुए ओम में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करना चाहिए।

यत। जब सृष्टि रूपी यज्ञ प्रारंभ हुआ तब परमेश्वर ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए चारों वेदों का ज्ञान दिया। उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद प्रकट हुए। ओ

मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रातः काल जाग जावे। उषाकालीन समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसी पवित्र बेल

0: और धन धान्य से जुड़ जाता है। ऐसा ही मनुष्य ऐश्वर्य और राज्यादि धारण करने में समर्थ होता है।
1: ओम यो अग्नि शोमः विशास पर्याद् देवद्रीचा मनसा युग्रितेन तस्य व्रतं रक्षतं पातं अहं सो विशे जनायम मही शर्म यच्छतम।
0: अग्नि और सोम तत्व से जगत की रचना हुई है। ये दोनों तत्व सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। इन्हीं दोनों तत्वों से अन्य तत्वों का विस्तार हुआ है। परमात्मा के इस सृष्टि यज्ञ में सभी तत्वों की उपस्थिति रक्षा एवं संतुलन से सब जीवों को सुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भी चाहिए कि वे सृष्टि क्रम के अनुकूल अपना कर्तव्य पूरा करें। सन्यासी महात्मा तथा धार्मिक विद्वानों का सत्कार करते हुए मन से शुभ कर्म करते रहें। अग्नि जल का सत्कार करते हुए घी आदि पवित्र हवि से यज्ञ द्वारा वायु को शुद्ध करें ताकि भयानक रोग हमें ग्रसित न करें। मर्यादा पूर्वक हम अपने शुभ कर्मों द्वारा अपने व्रतों की रक्षा करें और अहिंसा पूर्वक सुख का विस्तार करते रहें।
1: ओम अभिवर्धतां पया साभिः राष्ट्रेण वर्धतां रया सहस्त्रवर्चसे मौस्ताम अनुपक्षौ।
0: हे भक्त जनों, तुम ज्ञान के सोपान पर चढ़ते हुए प्रगति करो। सत्य विद्या से अपने आप को विकसित करो। यह ज्ञान रूपी अमृत तुम्हारी और राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्र के साथ तुम्हारी वृद्धि हो। तुम्हारी विद्या राष्ट्र हित के लिए हो। विद्या और तप से तुम तेजस्वी बनो। अपने जीवन को वर्चस्वी और स्वस्थ बनाओ। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करें। तुम्हारे तेज में सूर्य की हजारों किरणें सहायक बने। हे मानव, तुम्हारी बुद्धि संकट के समय भी विचलित न हो। तुम्हारे अंदर सात्विकता और पुण्य की भावना जागृत रहें।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। मंगलवार 1 सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी जो क्यूपिप टाउन सेंटर से रेजवी महात्मा गांधी को जोड़ेगी। अब रोज हिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉरिशस में मूंगों के अगले प्रजनन मौसम के करीब आने के साथ ही उनके संरक्षण और पुनर्स्थापना में जुटी टीमें इस प्राकृतिक घटना की निगरानी की तैयारी कर रही हैं। इस दौरान ब्लू बे, मेबर्ग और पॉइंट डिस्नी के आसपास समुद्र का पानी गुलाबी रंग का दिखाई दे सकता है। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य योग्यताएं हासिल करने का रास्ता खुल सकता है। उद्देश्य ये है कि प्रशिक्षण केवल भागीदारी प्रमाण पत्र तक सीमित न रहे। और विदेश में उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़ ने तबाही मचा दी। कम से कम 157 लोगों के मारे जाने की खबर, करीब 750 लोग लापता बताए जाते हैं। और अब स्थानीय मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर पाई जा रही है। अनुमान है कि आज सुबह के वक्त पूर्व, उत्तर एवं ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो के एक हिस्से पर बादल घेर आएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। अतिरिक्त जानकारी में बताया जाता है कि मस्करिंस की दक्षिण पश्चिम की ओर से एक जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे मौसम के करीब आने से मौसम ठंड रहेगा। और आज के लिए सूर्योदय 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे।
2: RM3 Radio.

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: चौराणु 95.6 98.2 तमे सांभळी रह्या छो RM3 रेडियो।
2: टाइम चेक, इट्स 10 AM।
3: दर रोज 10 થી 11 आवो अमारी साथे।
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: RM3 Manoranjan Radio.
3: Aavo amari sathe.
2: Aavo amari sathe aap sab koi nu saath aapi rahi chhe Ratna aap आवो अमारी साथे कार्यक्रम साथे जोड़ाया छो रेडियो मनोरंजन ना लहर पर। इट्स ऑलरेडी 10:01 अने आजनी तारीख 27 ऑगस्ट नो महीनो 2026 नु वर्ष। अने बस घणा बधा लोको अत्यारे एज डाउट में छे के आजे रक्षाबंधन के काले रक्षाबंधन। भाई आजे तो 14 तिथि छे अने बपोर पछी आपणे कहीए ने के पूर्णिमानी तिथि चढ़शे। श्रावण सुद 14 आजनी तिथि अने ते साथे ज भई सुरोमा शांतिनो अहसास हमेशा ने हमेशा छुपायेलो होय छे। तो चालो ए शांतिनो अनुभव करता आजना आपणा कार्यक्रमनी साथे जोड़ाई जाइए अने मधुर गुजराती गीतोना कार्यक्रममां आप सौ कोईनो प्रेमथी अमे साथ आपी रह्या छीए। तो ज्यां क्यांयथी पण जोड़ाया छो बस आशा ए ज करीए के आप सौ कोई मजामां हशो, आनंदमां हशो अने आजना आनंद भरेला दिवसने आपणे पूरी रीते माणवानो प्रयत्न चोक्कस करीशु। कारण के मनुष्यना प्रयत्नों ज तेमने हमेशा विकास तरफ लई जाय छे अने प्रगति तरफ तेने लई जवामां तेनो सहारो बने छे, तेमने सहायता आपे छे।

तो चलो आज ना अपना कार्यक्रम नी साथे शुरुआत करीशु एक मधुर गीत नो आज नो आनंद उठावता श्री स्वामीनारायण भजन माथी लेवामां आवेलुं आज नो आ प्रथम गीत अलका याज्ञिक ना मधुर स्वर नी साथे।

ए अखिल ब्रह्मांड नु सर्जन संचालन अने पालन करनारी शक्ति स्वरूपा माँ छे, जेने श्रद्धा जगत ना लोको जगदम्बा कहे छे। ए सर्वव्यापक माए आखे आखा आकाश नु जे ओढ़णू ओढ़ू छे ने, ए ओढ़णू एटले ज आ भेळियो।

भक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। बस मन खुश हो तो दिन अच्छा हो जाता है। और मन कैसे खुश हो सकता है? संसार की चीजों से खुशी तो मिलती है, लेकिन वह ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती कि दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। अब उसकी पूर्ति का प्रयत्न करते हैं तो तीसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है, तो कहाँ खुशी है? थोड़ी देर की खुशी, फिर से एक चिंता। तो क्यों ना हम प्रभु से जुड़ जाएं, जो ना कभी विनाश की ओर बढ़ते हैं, जो ना कभी अपना प्यार कम करते हैं। तो क्यों ना हम भक्ति करें उस प्रभु की जो सदा हमारे साथ रहता है।

श्रोताओं, जो प्रभु से जुड़ जाता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता, संसार की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर एक वस्त्र की तरह हमको मिला है और जितना हम इसका उपयोग करेंगे एक दिन यह घिसेगा। लेकिन इस शरीर को एक मंदिर मानना चाहिए, उसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। मरना तो है एक दिन, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जिह्वा के स्वाद में जो मर्जी खाते जाएं, आचरण की दृष्टि से संयम को ना अपनाएं और आधा जीवन केवल बिस्तर पर ही बिता दें और लोग हमारे को सेवा करें, दवाइयां देते रहें। यह भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये है कि मैं इतना स्वस्थ रहूं कि जो तकलीफ में है मैं उनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि भक्ति शब्द का अर्थ ही है भज धातु भज सेवायाम से बना है।

श्रोताओं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, वाणी, मन के विचार सभी पवित्र करने होते हैं। इसीलिए यम, नियम, आसन, योग इत्यादि व्यक्ति को अपनाना चाहिए ताकि वह इस शरीर रूपी मंदिर को रोज स्वच्छ कर सके। जिस कपड़े को उसने ओढ़ा है, जो भगवान ने उसे दिया है, उसे साफ सुथरा रख सके। और जितना यह साफ होगा उतना मन साफ होगा, जितना मन साफ होगा उतना प्रभु को व्यक्ति देख पाएगा, क्योंकि मन रूपी शीशे पर इच्छाओं रूपी धूल इतनी जमी होती है कि हम ईश्वर को देख ही नहीं पाते। हमें केवल अपनी इच्छाएं ही दिखती हैं और पूरा जीवन हम इच्छाओं के पीछे भागते हुए बस जीवन को यूं ही बेकार कर देते हैं।

श्रोताओं, इच्छाएं तो मृग मरीचिका जैसी हैं। जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढते हुए एक हिरन बार बार उसको रेत में चमकता हुआ पानी दिखता है, लेकिन हर बार गर्म रेत में वह मुंह मार देता है और शाम तक वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम भी मृत्यु तक इसी चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं और अभिमन्यु की तरह इन इच्छाओं के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अतः बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर का गुणगान, उनका भजन, उनकी भक्ति, दुखियों की सेवा, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, तब जाके उस प्रभु को हम समझ पाएंगे।

और अंत में श्रोताओं, जब ईश्वर के नजदीक हम होने लगते हैं तो मृत्यु एक पड़ाव लगने लगता है, उसका भी हम स्वागत करते हैं कि ठीक, जीवन में अब उसका वक्त आया है तो उससे भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो जाना ही है। तो किस बात का मोह, किस बात का आकर्षण, जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है, अगर हम पानी पीने नीचे उतरें तो क्या हम स्टेशन पर ही रुक जाते हैं? हम गाड़ी पर फिर चढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक जाना है। ठीक ऐसे ही इस संसार में प्रभु ने हमें जीवन का एक स्टेशन दिया है। इस स्टेशन पर बैठकर हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें, पर अपने मालिक को ना भूलें, अपने प्रभु की भक्ति करें, उसका नाम जप करें, ताकि हम अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यात्रा तय करके पहुंच सकें। तो श्रोताओं, इस अंतिम भजन के साथ अलका धनपत और डोमिनिक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे करुणा जी। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। कल शुक्रवार 28 अगस्त को सुबह 4 बजे मॉरिशस, रोड्रिग्स और सेंट भौरों के लिए तेज हवा और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। ये रविवार 30 अगस्त तक जारी रहेगी। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार एक ठंडी हवा की लहर और दक्षिण पश्चिम की ओर से मस्करिन्स की तरफ आने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से शुक्रवार से हमारा मौसम प्रभावित रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर तक हो सकते हैं। समंदर खराब रहेगा। दूर समंदर में लहरें 4 से 6 मीटर ऊंची रह सकती हैं। ऐसे में लोगों से खास सावधानी बरतने की मांग की जाती है। ज्वार के समय पश्चिमी और दक्षिणी तटों से भी दूर रहने की मांग की जाती है। यूपी में पुलिस हिरासत से फरार हुआ संदिग्ध गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से फरार होने के बाद कल से तलाशे जा रहे लुई कर्सले वोंग वन चोए को आज सुबह क्यूपिप के रेजिडेंस केनेडी इलाके में एक पुलिस अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध को चोरी और एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के मामले में हिरासत में लिया गया था। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद उसे कौदस स्थित विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया था। बाद में जांच के सिलसिले में उसे स्टैनले पुलिस स्टेशन और फिर क्यूपिप पुलिस स्टेशन लाया गया। कल दोपहर क्यूपिप पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष से वो हथकड़ी पहने ही फरार हो गया था। मंगलवार 1 सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी, जो क्यूपिप को रेजवी से जोड़ेगी। इस तरह रोजहिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बदलाव खासकर क्यूपिप से रेजवी मौका जाने वाले छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। विदेश में नेपाल में उत्तर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। 165 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 826 लोग अभी भी लापता हैं। पड़ोसी तिब्बत को शामिल करने पर करीब 1500 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार ये आपदा हिमालय में ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने से शुरू हुई। बर्फ चट्टानों और कीचड़ का एक विशाल मलबा लहंदे खोला नदी की घाटी में जा गिरा, जिससे नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक गया। बाद में प्राकृतिक बांध टूटने पर बड़ी मात्रा में पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर बहा, जिससे अचानक विनाशकारी बाढ़ आ गई। कई गांव, सड़कें और पुल इसकी चपेट में आकर बह गए। मुश्किल परिस्थितियों के बीच 5000 से अधिक बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। वहां की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 165 शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। एजेंसी के अनुसार पर्यटकों समेत 800 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। लापता बताए गए

0: लोगों में कम से कम 133 भारतीय नागरिक भी हैं। इनमें से कई लोग कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे थे। ये हिमालय में नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास स्थित हैं। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रूट रॉयल मोसेलमों सेंट एंड्रे में 48 साल के 48-year-old कुमारी हेमरानी चंदन सिंह जो काजल से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके भाई क्रिस चंदन सिंह के मकान रूट रॉयल मोसेलमों सेंट एंड्रे से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस त्रियोली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। मारियामेन टेम्पल रोड कापमालोरी में 73 साल के 73-year-old श्री हरिदत्त ओकिल जो प्रेम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान मारियामेन टेम्पल रोड कापमालोरी से उठाकर दाह संस्कार के लिए डाउची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: खाना सफर खाना सफर वेलकम नमस्कार स्वागत है दिन के 12 बजकर 10 मिनट हुए हैं कैसे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जानती हूँ थोड़े नाराज तो ज़रूर है मुझसे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है लेकिन ट्रस्ट मी हम यही हैं यही थे और रेडियो मनोरंजन पर आपने हमारी आवाज़ कल तो सुनी होगी कल हम जो निकले थे एक लंबे सफ़र में हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक घूमे नहीं हम गए गुडलैंड्स गुडलैंड्स से गए हम लोग पोर्ट लुइस पोर्ट लुइस से हम गए रोज़बेल रोज़बेल से फ्लाक हर जगह हमारे जो लिसनर्स हैं हमसे मिलने आए और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों ने टाइम निकाल कर हमसे मुलाकात की चलिए इसी के साथ भी पुराने गीतों का जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे हमारा टिकटॉक थोड़ी देर में होगा लाइव
1: You're listening RM Free Radio.

0: तो जरा ओढ़ो। अरे माँ ने कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: RM Free Radio.

खाना सफर, खाना सफर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र। कैसे हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और यहाँ खूबसूरत गीतों के साथ आगे बढ़ते हुए चलिए रात और दिन फिल्म का ये प्यारा सा गाना हो जाए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: दिन के 12 बजकर 30 मिनट हुए हैं और हमारे साथ हमारे सभी लिसनर्स जुड़ चुके हैं काजल गुदारी फोटो मिर्जी डेविड वी हैव रूबा गंगा एनटीआर राजन कुजन अनिल जी थैंक यू श्यामा महराली आपने मुझे इतना मिस किया मैंने भी आपको बहुत मिस किया चलिए सुनन उमेश विकास साथ में दीप्ति निजाम रमाक समृता अर्जुन आलिया साथ में किरण पुरी जो कनाडा से हमें सुन रही हैं एंड ऑल्सो वी हैव साधना जगदोयाल तीशा दुर्गा जितेंद्र दुलवा आप सभी हमारे साथ वीमा पंचा हमारे साथ है नेक्स्ट गाना उनके फ्रेंड के लिए और यही गाना हम डेडिकेट करेंगे सूबी के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमने रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की जो फर्स्ट एनिवर्सरी पे स्पेशल प्रोग्राम देखा था टीवी पे बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आपका प्यार है एंड प्रसाद प्रिया हमारे साथ हैं चलिए हंसना लक्ष्मण कहती हैं पुरानी यादें याद दिलाने के लिए थैंक यू हसना जी हमारा तो काम ही है आपको एंटरटेन करना खूबसूरत गीतों के साथ तो बस चले आए हैं सानिया नमस्कार एंड वी हैव द नेक्स्ट गाना सविता के लिए यहाँ पर हमारे साथ सहाय फैमिली जुड़े हुए हैं थैंक यू एंड वी हैव विराज हाय विराज हाउ आर यू डूइंग चलिए तो इसी के साथ तेज सोनातन के लिए गाना होगा माधुरी आ गई है एक दो तीन करती हुई मेरे कान भी पकड़ेंगे चलो शाइनी हाय हाउ आर यू चलो तो यहाँ नेक्स्ट गाना होगा रक्षाबंधन पे बहुत सारे विशेस भेज रही हैं किरण और मोहिनी बहुत सारा प्यार भेज रही हैं वी हैव विमी सानिया एंड यहाँ पर सब कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है शाइनी कह रहे हैं कि पोर्टल्स में बहुत गर्मी है ये तो मुझे पता है कल लोग हम गए थे वहाँ पे लेकिन हाँ गर्मी है लेकिन शॉपिंग करते करते पता नहीं चलता और लकी चंद सना हमारे साथ हैं हेलो जी और नेक्स्ट गाना दुर्गा जी आपकी पूरी फैमिली के लिए दीपक दीप दयाल नमस्कार थैंक यू सो मच एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू ऑल्सो क्योंकि सिर्फ हमारी नहीं आप लोगों की भी एनिवर्सरी है नमस्ते रोशन जी और यहाँ पर वनक्कम जयालक्ष्मी आपका वेलकम है मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू सो मच कहते हैं फ्लैक में नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा जब होगा तो हम बता देंगे आपको रेडियो पे आपको पता चल जाएगा लेकिन आई होप बहुत जल्द नेक्स्ट गाना विनती को पोल के लिए और पीछे काफ़े गाना जाएगा तो उन सब के लिए जो रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान हमारे साथ इंडिया से जुड़े हुए लेकिन वहाँ पे तो टिकटॉक बैन है मुझे नहीं पता आप टिकटॉक पे कैसे हमें लाइव देख रहे हैं लेकिन थैंक यू अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं धर्मेश गीता जी कहती हैं थैंक यू धर्मेश सर का इंटरव्यू हमने दिखाने के लिए ओ या ही इज़ सो वंडरफुल इतने अच्छे इंसान हैं वो इतने प्यारे इंसान हैं वो इतने डाउन टू अर्थ इतने हम्बल मज़ा ही आ गया उनके साथ बात करके ओके तो यहाँ पर वर्षा जी के लिए और साथ में

0: कविता अनु के लिए मिस्टर नूरुद्दीन हेलो हाउ आर यू सुमन आपके लिए भी एंड संध्या आपका वेलकम करते हैं वी हैव सुबीता रुकैया गुड मॉर्निंग कहते हैं हमारी मॉर्निंग हुई है अभी लंदन में एंड हैप्पी वी हैड रेन आफ्टर मंथ्स ओके तो बारिश हो गई आपकी यहाँ चलो अच्छी बात है ऐशनवी आपका वेलकम है और यहाँ पर राम तहल मंडेल जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका स्वागत है रोजनी रेडी नमस्कार अब उत्तम आपको भी हमारी ओर से नमस्कार
1: RM3 Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर
1: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। भाई महफिल तो हम बना ही लेते हैं आपके लिए, सजा ही देते हैं आपके लिए, और कोशिश करते हैं कि बस जितने भी लोग शामिल हैं वो खुश रहें। जैसे कि अभी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, वी हैव रोहित रंभा जी, और उन्होंने कहा विल्नुवा मॉरिशस में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको बहुत सारा प्यार, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। वी हैव रेशमा, वी हैव फरहा, एंड नेक्स्ट गाना संजनी और नम्रता के लिए भी होगा। तनवीर खालिद हमारे साथ हैं, और आयशा की तरफ से ये गाना जाएगा फॉर लविंग, उनका आज बर्थडे है। तो शुमशुम और ननकू फैमिली की तरफ से उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और किरण जी आप घबराए नहीं, हमारे पास गाने हैं, वे थोड़ी देर में चलाएंगे। नीम चैन आपका भी हम वेलकम करते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव सरोज, वी हैव अंजी आर्मगम, वनकम आपको, एंड साहिल आ गया, कहते हैं कि आपने पुकारा तो हम आ गए। भाई वीकेंड हमारा बहुत अच्छा था, आप बताइए आपका कैसे गुजरा। चलिए रक्षाबंधन जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियाँ तो काफ़ी लगी हुई होंगी, अभी काफ़ी सारे लोग हैं अभी तैयारी में लगे हुए हैं, घरों में मिठाइयाँ बन रही हैं और भाई बहनों के लिए शॉपिंग की जा रही हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब रक्षाबंधन होती है तो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, और जब सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो मिठाई हो जो स्पेशल हो, और कुछ लोग अपने घर पे अपने हाथों से मिठाई बनाना पसंद करते हैं। ये होता है ना, ये भाई बहन का प्यार होता है। तो चलिए भाई बहन के इसी प्यार के लिए अभी हम आपको कहेंगे रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि भाई बहन के बीच का जो रिश्ता है वो ऐसे ही बनी रहे, और आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और इस दिन को हमारे साथ प्यार से सेलिब्रेट करें।
2: रक्षाबंधन वादा है, या धागा है प्यार का।
3: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

सुहाना सफर सुहाना सफर। बहना ने भाई की कलारी में सिर्फ धागा नहीं बांधा, ये प्यार का धागा होता है, ये वो धागा होता है जो ये साबित करता है कि हर सुख में हर दुख में भाई बहन का हमेशा साथ रहेगा। जो भाई अपने बहनों से बड़े होते हैं उनको पिता का दर्जा मिलता है, और जो अपनी बहनों से छोटे होते हैं वो जो बहनें होती हैं उनके भाइयों के लिए माँ का किरदार निभाती हैं, है ना। तो चलिए, ये जो रिश्ता है हमें पता है कि हमारी माँ है, हमारे पापा हैं, लेकिन जब भाई बहनों की बात आती है ना तो यहाँ पर बड़े भाई जो होते हैं वो पिता समान होते हैं और बड़ी बहन जो है वो माँ समान होती हैं। तो हमें एक ही भाई और बहन में हमें माँ बाप का भी प्यार मिलता है ना। तो चलिए आगे

0: बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाना होगा नेश के लिए और ये जाएगा टू पूनम वी नाइन विकास पर ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंड वी हैव साहिल क्वीन सुल्ताना दीप्ति राजेश अशोकला जो कि अपनी वाइफ माया को बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं क्योंकि आज उनकी 31st वेडिंग एनिवर्सरी है और यहाँ पर देखते हैं हम काफ़ी सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और अगर दीनू आपके लिए गाना होगा और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे सूर्या के लिए थैंक यू उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है हमारे लिए फिजी आइलैंड से थैंक यू ललिता थैंक यू सूर्या थैंक यू लिमेशन एंड थैंक यू आपको कहेंगे
1: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मनोरंजन
0: और चलिए गाना हम पास्कल के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस समय साथ हैं संजीव कुमार यानी कि संजय फ्रॉम फिजी हाय संजय लवना की तरफ से ये गाना होगा टू रोलां टोमा जो कि इस समय केन्या में काम कर रहे हैं एंड प्लीज सेंड मी योर रियल नेम जो टिकटॉक पे हमें अपने नाम भेजते हैं मुझे अच्छा लगेगा आपका असली नाम जब आप भेजते हैं थैंक यू आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो मनोरंजन वेदिता के साथ ऑन RM3 थैंक यू एंड चलिए इसके साथ नेक्स्ट हमारा गाना है लेकर आए हैं आपके लिए फ्रॉम द मूवी जोली

भाई बस में तो हम भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि थोड़ी देर में हमें समाचारों की ओर बढ़ना है और फिर उसके बाद हमारा जो गाना है हमें लेके जाएगा 1 बजे के समाचारों की ओर और साथ में यहां पर नेक्स्ट गाना हम रेशमा के नाम डेडिकेट करेंगे जो कि है फ्रॉम रेनियन आइलैंड हमें सुन रही हैं वी हैव देविनाश शवि संस्कृति कपूर कृष्णा फ्रॉम नेपाल एंड ऑफ कोर्स वी हैव तेओ गाना उनके मामू के लिए और उनके मॉम धनवंती जगू के नाम एंड नरेंद्र दत्त हरि के लिए साथ में कविता की सुन राज फा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस करुणा साधना मंजुला कौलेसर हरिदास सभी साथ में हैं अगले गाने के साथ मिलते हैं अब हम 1 बजे के समाचारों की ओर

0: घड़ी मिलाते चलिए इस समय दिन के ठीक एक बजा है।
1: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे आस्था। नमस्कार।
2: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 165 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 826 लोग अभी लापता हैं। पड़ोसी तिब्बत को मिलाकर करीब 1500 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टान और कीचड़ का भारी मलबा नदी में जा गिरा। इससे पानी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया और फिर अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा निचले इलाकों की ओर बह निकला। कई गांव, सड़कें और पुलिस की चपेट में आए हैं। 5000 से अधिक बचाव कर्मी हालत राहत और तलाश के काम में जुटी हैं। मॉरिशस और रोड्रिक्स और सैंपोंडों के लिए तेज हवा और ऊंची लहरें की चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी कल शुक्रवार सुबह 4 बजे से रविवार रात 10 बजे तक लागू रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इलाके में एक ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि कल से एक शक्तिशाली एंटीसाइक्लोन भी दक्षिण पश्चिम से इलाके के करीब आएगा। दक्षिण पूर्व दिशा से हवा करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। कटरबोन पुलिस स्टेशन से कल फरार हुआ एक कैदी आज सुबह फिर पकड़ा गया। पुलिस ने उसे रेजिडेंस केनेडी कटरबोन में कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। चोरी और एक पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में उसे हिरासत में रखा गया था। तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद उसे विक्टोरिया अस्पताल में ले जाया गया था। बाद में उसे कटरबोन पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान वो हथकड़ी लगे होने के बावजूद वो फरार हो गया था। मेट्रो एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए 1 सितंबर से क्यूपी और रिजवी के बीच सफ़र आसान होने जा रहा है। लाइन 2 पर नई सीधी सेवा शुरू की जाएगी, यानी यात्रियों को रोजेल सेंट्रल में मेट्रो बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सेवा रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस सीधी सेवा को आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मरियमन टेम्पल रोड कैप मालोरू में 73 साल के हरिदत्त उकील की मृत्यु हो गई है। हरिदत्त उकील की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें प्रेम के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान कापमालोगों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड मोसलमान सेंट ऑन्द्रे में 48 ईयर्स ओल्ड के मिस हेमरानी चंदन सिंह की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें काजल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके भाई कृष चंदन सिंह के मकान मोसलमान सेंट ऑन्द्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
3: Retro Rhythm. RM2.
4: RM3. Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए दोस्तों, सुहाना सफ़र में अब हम आगे बढ़ेंगे अगले गाने के साथ और लता जी के साथ। अभी ये खूबसूरत सा गाना हम सुन रहे थे, लता जी एक बार फिर आ रही है अगले गाने के साथ, लेकिन अब की बारी उनकी साथ आवाज़ मिलाने जा रहे हैं मुकेश साहब। फिल्म का नाम है मिलन, दिन की 1:10, आज है 27th of August, यानी कि आज है द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मुकेश साहब। जी हाँ, और मुकेश साहब सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे और उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी किया है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है और एक गाना है, फिल्म का नाम था कई बार यूं ही देखा, रजनीगंधा, उसमें गाना था कई बार यूं ही देखा है। 1973 में वॉन हिम द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने अपना जो करियर है कैसे शुरुआत की, उन्होंने एक्टर सिंगर शुरुआत की थी निर्दोष के साथ, फिर फिल्म आई आदाब, फिर उसके बाद राज कपूर साहब की फिल्म आ में वो आज गेस्ट रोल नज़र आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने को प्रोड्यूसर एंड कंपोजर के रूप में काम किया। अनुराग फिल्म आई थी 1956 में एंड मल्हार फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया। एंड बाकी तो उनकी जो सिंगिंग करियर है आपको पता ही है कि उनको मोतीलाल जी ने नोटिस किया था और उनकी एक डिस्टेंट दूर की एक बहन की शादी थी, फिर वो उनको अपने साथ बॉम्बे ले आए, फिर उसके बाद उनका जो सिंगिंग लेसन्स था उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से सीखा और फिर उनको एज एक्टर सिंगर रोल दिया फिल्म निर्दोष में, और धीरे धीरे करके उनका सफ़र शुरू हुआ। एंड मुकेश जी KL सहगल के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनको अपना आइडल भी मानते थे, तो जब KL सहगल जी ने उनको पहली बार सुना, उनका गाना दिल जलता है, तो उन्होंने लगा कि उनको लगा कि अरे मैंने तो ये गाना कभी नहीं गाया, ये गाना मेरी आवाज़ में, इसका मतलब ये है कि सबको पता चल गया कि भाई उनकी जो आवाज़ है ना वो एकदम फिट होता है। फिर उसके बाद नौशाद जी ने उनको अंदाज़ फिल्म में गाने को दिया और वो काफ़ी सारे गाने गाते रहे। मुकेश जी वॉज एक्चुअली द घोस्ट वॉइस ऑफ दिलीप कुमार इन द मूवी, एंड मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज कपूर जी के लिए गाया था और फिल्म का नाम अंदाज आपको पता ही है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने बहुत सारे हिट्स दिए हैं नौशाद साहब के लिए, जैसे अनुख्यादा, मेला, अंदाज और बहुत सारे ऐसे गाने थे। तो चलिए, अभी जब उनकी बात हुई है तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास उनका ये गाना है, उनके फ़ैन्स तो अभी भी हैं, हमें सुन रहे होंगे तो शायद उनकी आवाज़ में ये गाना सुनकर उनको अच्छा लगे।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: हम तुम युग युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। वैसे हम तो मुकेश जी के गाने चलाते रहते हैं, उनकी याद तो आती रहती है। बस बात इतनी है कि आज एक खास दिन है, आज के दिन वो हमें छोड़ चले थे। चलिए, खूबसूरत गीतों के बीच यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज याद किया जा रहा है। मालिनी की तरफ से उनके भाई सचिन के लिए, जिन्हें वो बहुत याद कर रही है, बहुत मिस कर रही है। वहीं पर हमारे साथ हैं आरव, वी हैव तिलमा, सुनील भुवन जो कहते हैं ड्राइव करते करते सुन रहे हैं, मज़ा ही आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड यहाँ पर गाना होगा भारती के लिए, आरती, आशी, विक्रॉय। विक्रॉय ने सबको कहा है वो को आज, क्योंकि उनको पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तैयारी करनी होती है। सो थैंक यू फॉर एक्नोलेजिंग इट, कि आपको पता है कि हम मेहनत करते हैं आपके लिए। एंड साथ में यहाँ पे गाना होगा प्रीति भारती विलासा के लिए, जो अभी CWA में काम कर रही हैं, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। हमारे साथ हैं वीनू, करिश्मा कहती हैं सब फैमिली के लिए गाना, अंजू राम चंदुलू हमारे साथ, विद्यानंद गोपोल, शिरिन रामजोन, एंड वी हैव रेश

0: सुषमा चकोरी, और उन्होंने कहा कि हमें भी अपने भाई मुकेश की याद आ रही है जो आज हमारे बीच नहीं है। यहाँ एंजल हमारे साथ हैं, गुड़िया रानी क्या बात है, रेशमा जी, भारती जी, एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा सुल्ताना, जारा, आसिम, ये हैं शयाना की तरफ से। एंड वी हैव द नेक्स्ट गाना जो संजय कीनू के लिए हम डेडिकेट करेंगे। थैंक यू परी फॉर लविंग द शो जो हमने टीवी के लिए किया, कविता चनू नमस्ते। एंड ये गाना जाएगा आपके लिए, वेदना है काटरबोन से। वहीं पे हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा फॉर गैमी, ओके गैमी के लिए गाना होगा, और साथ में निशा राम प्रसाद हमारे साथ है, गाना होगा आपके नाम अंजनी। हाय अंजनी, गुड आफ्टरनून, एंड वी हैव हैंसले, हाय। चलो जी यहाँ पे गाना होगा रुकैया सुदन के नाम, ठीक है, एंड सिमी रामदत्त भी हमारे साथ हैं। शापिक रोज़ बता दिया मुझे, क्या बात है। नईम, हाय नईम, कैसे हो आप? थैंक यू नईम, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, यही चाहिए और क्या चाहिए हमें। तो पूजा के लिए गाना होगा, और थैंक यू पूजा, अजय लक्ष्मण आपका भी हम स्वागत करते हैं। चलो तो यहाँ पर रुकैया कहती हैं, कोई बात नहीं, आप बस एक स्माइल दे दो। मैं कहती हूँ स्माइल की, आप मेरा लाफ्टर ले लो, अच्छा लगेगा हमें भी। और गाना होगा आप सबके लिए, विक कहते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं उनका नाम है युग, और अभी आपने गाना चलाया युग युग, ये गीत मिलन के गाते रहेंगे। माय गॉड, कमाल है। सिवासन आपके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं, एंड वी हैव ओवन फ्रॉम डबलिन आइलैंड। हाय गाइस, जो लोग हमें आयरन में सुन रहे हैं उनको अब भी हेलो।
1: यू आर लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो, रेडियो, रेडियो।
0: चलिए ये गाना हम सरोज, राजन, मोनिका, उमेश के नाम डेडिकेट करेंगे। वहीं पे देविका हमारे साथ हैं, उनके लिए भी गाना डेडिकेट करेंगे। एंड वी हैव कायरा, गाना होगा गंगाराम फैमिली के लिए जो साथ दे रही हैं। एंड नाहिद जरीन, आपका वेलकम है जी मैन, अंजिया नजर आपके लिए, एंड साथ में विमला आपाडू के नाम।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए अगले गाने के साथ बढ़ते हैं अब हम आपके डेडिकेशंस की ओर। नेक्स्ट हमारा गाना जो होगा इसे हम डेडिकेट करने जा रहे हैं आपके लिए। आप हैं प्रणय, अनीशा, टू ब्रदर कृष्णा एंड रेखा के लिए गाना होगा। उत्तम बिरावा, राकेश टोवाकल, मॉम आरती शिवनंदन के लिए, दानी जगरू, लीना रोजबेल से, नहीं बेल रोज से, ओके कोई बात नहीं, बेल रोज, रोज बेल, हाँ मैं पहले बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी, तो बेल रोज से हैं। ज्योति चमन, सीता जमन जो हैं वो हैं ज्ञान साउथ अमेरिका से। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मायशा की तरफ से अंजलि, जगदीश, जगदत्त और साथ में संगीता के लिए गाना होगा। साथ में गाना होगा दिव्या विलक के लिए, पर अभिषेक, ललिता, शर्मिली, भाई प्रवीण एंड संजय भरूसी के नाम, एंड हमारे साथ वैदेही भी जुड़ी हुई हैं। तो ये जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए, गाना होगा किसके लिए, वेल वी हैव हेमंत जो हमारे साथ जुड़े हैं, वी हैव बेबू, बेबू में बेबू। चलो तो नेक्स्ट गाना सुनने के लिए अगर आप लोग भी रेडी हैं तो उनके नाम डेडिकेट करते हैं।

से सीबा निशी सरगम और शनाया के लिए नेक्स्ट गाना होगा और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं फॉर तनीशा एंड स्विंग ये नाम है ओके चलो कोई बात नहीं यहाँ पे सुविता प्रताप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड वी हैव नेक्स्ट गाना जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए वी हैव कौन है हमारे साथ देखा नाम ऊपर से नीचे हो रहा है यहाँ पे हमारे टिकटॉक पेज पे तो चलो देविका के लिए जो कि है फ्रॉम यूके एंड ये गाना हम डेडिकेट करेंगे फहंस राज जो साथ दे रहे हैं नमस्कार स्वागत है आपका चलो नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं एंड इसे साथ में गुनगुनाते हैं एक्चुअली इट्स अ ब्यूटिफुल वन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड आई लाइक टू सिंग अलॉन्ग अगर आपको भी ये गाना पसंद है यू वॉन्ट टू सिंग विद मी यू कैन सिंग याद रखिए कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है सुहाना सफर ये चलेगा आज 3 बजे तक तो आप लोग चाहे तो आप अपने मैसेजेस जो हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं अगर चाहे तो आप हमें जो हमारा टिकटॉक है वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं

सुहाना सफर, सुहाना सफर। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। चलो ठीक है, यहाँ पर साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे हमारे दोस्त से जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे रेडियो मनोरंजन के साथ। और चलिए जी, यहाँ पर हमारा जो गाना होगा हम यहाँ आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। किरण जी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जबकि उनके सोने का टाइम होता है, लेकिन वो देर तक हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। थैंक यू अनिल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ये हैं परी। थैंक यू मनोज प्रतिया जी, आपके लिए, आप सेवास्तोपोल से साथ दे रहे हैं रक्षाबंधन पे, सबको आपने विशेस भेजे हैं। अलंकार कहते हैं कि नाइस वन, दीपक बन के चलता चल। जी बिल्कुल, ये तो जलते रहते थे, आप चलते रहे, जलते रहे। और नेक्स्ट गाना जो होगा, टू माई ब्रदर्स ऑफ कोर्स नुआ, ये है मंबोत फैमिली। एंड यहाँ गाना होगा दिलवंती सोनातन के लिए, नमस्ते जी, नमस्ते शारदा लखनऊ। एंड गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए सीता पदारत, इंदिरा तुक्कू और नंदा मेकन। रुक्मिनी कहते हैं रक्षाबंधन पे मेरे भाइयों के लिए भी, योगेश एंड मिथिलेश साथ दे रहे हैं। तो चलिए, गाना तो होगा उनके लिए, लेकिन वो गाना आएगा बस थोड़ी ही देर में। फिलहाल अभी के लिए जो गाना आ रहा है वो है लता जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है डॉन। वीना बिहारी के नाम डेडिकेट करते हैं प्यारा सा गाना।

सुहाना सफर सुहाना सफर। चलिए जी, यहाँ पर डॉन फिल्म का गाना था, ये फिल्म आई थी 1977 में, और अभी हमारे पास 77 से ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं, और मैं किसके नाम गाना चलाऊँ, तो गाना होगा शमाज की तरफ से उनके बेटी मेविन के नाम। और खतीबा मंगर हमारे साथ हैं, सलाम, कैसे हैं, थैंक यू सो मच, उन्होंने रक्षाबंधन पे हम सबको अच्छी विशेज भेजी हैं, थैंक यू। चांद राज फिजियालन से हैं, हाय, कैसे हो आप। और नंदा कहते हैं 5 भाइयों के लिए गाना और मेरे बेटे के लिए भी। एंड यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हमारे साथ अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हमें सुनना चाहते हैं तो टिकटॉक पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, सो थैंक यू। जनीता के लिए गाना होगा और गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

0: मैंने पूछा चांद से, भाई चांद से तो हमारी भी बड़ी बातें होती हैं, हमसे तो कभी कुछ कहते नहीं है वो।
1: सुहाना सफर।
0: हाँ ये बात अलग है कि आप कौन से वाली चांद के साथ बात करी है, गलत अलग बात है, क्योंकि मैं जिनसे बात करती हूँ उनका नाम है चांद, तो मैं जब बात करती हूँ तो बड़े शर्माते, वो बात नहीं करते। अब आप किस चांद से बात करते हैं ज़रूर बताएगा। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं नाजिया के लिए, और साथ में ये गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं फॉर ओके वानी विलन, तरुण राम, आकाश जो बोशों से हैं, आज उनका बर्थडे है, विशाल बर्मा एंड इमरान के नाम भी। तो गाना कौन सा होगा, चलिए भाई बड़े दिल वाली फिल्म का गाना हो जाए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम सुहाना सफर जहां मैं विदित आपका साथ दे रही हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारी गीतों की सिलेक्शन में अभी कुछ और गाने बाकी हैं एंड वी हैव वनीता जो साथ दे रही हैं वीना बिहारी गाना मांग रही हैं येशना और कामना के लिए उनकी बेटी हैं और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर वीजना ओके नजीमा गोबर्धन हमारे साथ वी हैव शक जो कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ कोर्स इट इज एक्चुअली हमारे फेवरेट गीतों में से हैं एके थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सिलेक्शन एंड देवी मोहन आपने कहा है कि भाई आपने तो माहौल को एकदम रोमांटिक बना दिया अब क्या करें बनाना पड़ता है अब अगर प्यार नहीं होगा हमारे शो में तो शो आगे कैसे बढ़ेगा साथ देते रहिए गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ झूमते रहिए हमारे खूबसूरत गीतों का ये सिलसिला जारी है आपके लिए दो बजे के समाचारों के बाद भी

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए जी, खूबसूरत गीतों की इस लिस्ट में एक और गाना शामिल है। फिल्म का नाम है ज़मीं आसमां और ये गाना हम डेफिनेटली अपने उन दोस्तों के नाम डेडिकेट करेंगे जिनको लगता है कि ये सिर्फ गाने नहीं, इट्स अ फीलिंग। जी बिल्कुल, हमारे जज्बात जो दिल से निकलते हैं, जो हमें ज़िंदगी की हर एक कहानी सुनाते हैं। चलिए जी, किरण जी को हम कहेंगे थैंक यू सो मच और यहाँ पर काफ़ी खुश हो रहे हैं साहिल, क्योंकि उनको मौका मिल गया हमारे साथ अभी गीतों को गुनगुनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाना जो है हम थोड़ी देर में आपके लिए चलाएंगे, फिलहाल अभी के लिए हम बढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर में समाचारों की ओर, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है कि 2 बजने को है और मैं इतना प्यारा गाना मिस नहीं करना चाहती। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में इस गाने के बाद।
2: रक्षाबंधन
3: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए।

0: भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना।

0: एक बार फिर सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे आस्था नमस्कार
1: नमस्कार दो बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है अब तक 165 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 826 लोग अब भी लापता हैं पड़ोसी तिब्बत को मिलाकर करीब 1500 लोगों की तलाश जारी है अधिकारियों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ चट्टान और कीचड़ का भारी मलबा नदी में जा गिरा इससे पानी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया और फिर अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा निचले इलाकों की ओर बह निकला कई गांव सड़कें और पुल इसकी चपेट में आए हैं 5000 से अधिक बचाव कर्मी राहत और तलाश के काम में जुटे हुए हैं मॉरिशस रोड्रिग्स और सैन ब्रांडों के लिए तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के अनुसार इलाके में ठंडी हवाओं का दबाव है जबकि कल से एक शक्तिशाली एंटी साइक्लोन भी दक्षिण पश्चिम से इलाके के करीब आएगा दक्षिण पूर्व दिशा से हवा करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं पॉपुलमुसिस का नया बाजार अब लोगों के लिए खुल गया है करीब 138 मिलियन रुपए की लागत से बने इस बाजार में 400 से अधिक स्टैंड हैं जिनमें अधिकतर कृषि सामानों के लिए हैं लेकिन कपड़े बेचने वाले दुकानदार फिलहाल पहली मंजिल पर जाने को तैयार नहीं है उनका कहना है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए वहां लिफ्ट होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब इन दुकानदारों के लिए दूसरी जगह देने पर विचार कर रही है सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग को अब और उपयोगी बनाने की तैयारी है कर्मचारियों को केवल भागीदारी का प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल करने पर भी विचार किया जा रहा है उन्हें ये अवसर दिया जा रहा है मानव संसाधन प्रशासन वित्त और सरकारी खरीद जैसे सेक्टरों में सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा और उच्च स्तर की क्वालिफिकेशन तक ट्रेनिंग दी जाएगी इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना और देश की जरूरतों के अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करना है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर एवेन्यू ड्रिप बेलरोज में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के देवदत्त सिंह बिहारी की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें मामू के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थे कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी सुनीता बिहारी के मकान एवेन्यू ड्रिप बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगोद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM रॉयल रोड लाफ्लोरा में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री मनोहर कुदी की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें मदन के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान लाफ्लोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास। You're listening to RM3 Radio Man.

चलिए खूबसूरत सा गाना बिंदिया मुतुसामी के नाम, दीपक बिहारी, साइलेश पैतो जो कोई रांची से हैं उनकी पत्नी की तरफ से, वे आर कर्सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अभी सिंगापुर में वेकेशन है उनका, अभी घूम फिर रहे हैं कुनाल और वाफिया के लिए, वहीं पे गीता है फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड रामा पुजारी उनके भाई और बहनों के लिए, बिंदु बिहारी का बर्थडे है आज तो हैप्पी बर्थडे, कल्याणी जी का स्वागत, रेखा एंड बेटे अंश के लिए जो है फ्रॉम पोमोजे, मोहिनी के लिए न्यूजीलैंड से प्रसाद जी हमारे साथ हैं, किंग यूजर आपका भी हम वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, और चलिए यहाँ पर हैप्पी रक्षाबंधन टू माइक चल

टू और टिंकू नितेश निलेश एंड रूबन एंड यहां पर शिनाज ने भी सबको विश भेजा है तो उनकी तरफ से भी हैप्पी रक्षाबंधन प्रतिमा आपका स्वागत है एंड साथ में ये गाना जाएगा फॉर नीलिमा जो साथ दे रही है हमारे और तनिषा के लिए जो साथ दे रही हैं गाने एंजॉय कर रही हैं ललिता जी आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम बाबूलाल फैमिली ऑफ वाकुआ

0: You're listening RM3 Radio.
1: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या?
2: जी नहीं, हम तो नाराज नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप जितना भी सितम करेंगे वो सितम सहने के लिए रेडी हैं।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: वकील साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: श्री जी यादों की बारात फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना था आप एंजॉय कर रहे थे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी वेरिता आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर.
1: RM3 रेडियो.
0: ये गाना हम बबीता प्रतिमा वनीशा जो कि मोंटेनेग्रो से हमारे साथ जुड़ी हैं सभी उनके फैमिली के लिए जो मॉरिशस में हैं अशोक ललिता नरिनी साथ में हैं सुनीता संजीवन राजीव इशिता पाकवासी और जानवी के नाम.

मेरे प्यारे दोस्त से अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 3 बजे के समाचारों की ओर, फिर उसके बाद अनुराधा के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की चर्चा। मैं विरिता आपसे गाजस चाहूंगी, आपसे फिर मिलेंगे हम कल 12 बजे, भूलिएगा नहीं इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।

0: जबकि 826 लोग अब भी लापता हैं। पड़ोसी तिब्बत को मिलाकर करीब 1500 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टान और कीचड़ का भारी मलबा नदी में जा गिरा, इससे पानी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया। मेट्रो एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए 1 सितंबर से क्यूपिप और गेजवी के बीच सफर आसान होने जा रहा है। लाइन ट्यूब पर नई सीधी सेवा शुरू की जाएगी, यानी यात्रियों को रोज हिल सेंट्रल में मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये सेवा रास्ते की सभी स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस सीधी सेवा को आगे भी जारी रखने का विचार किया जा रहा है। पॉपुलर म्यूजिक का नया बाजार अब लोगों के लिए खुल गया है। करीब 138 मिलियन रुपए की लागत से बने इस बाजार में 400 से अधिक दुकानें हैं, जिनमें अधिकतर कृषि उत्पादों के लिए हैं। लेकिन कपड़े बेचने वाले दुकानदार फिलहाल पहली मंजिल पर जाने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए वहां लिफ्ट होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब इन दुकानदारों के लिए दूसरी जगह देने पर विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग को अब और उपयोगी बनाने की तैयारी। कर्मचारियों को केवल भागीदारी का प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल करने का भी अवसर मिलेगा। मानव संसाधन, प्रशासन, वित्त और सरकारी खरीद जैसे सेक्टरों में सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा के उच्च स्तर की क्वालिफिकेशन तक ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मिडल रोड प्लंदी पपाई में 73 साल के 73 years old के श्री रामेश सानुत की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान प्लंदी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीएफओ प्लंदी पपाई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। गांधी रोड अर्नेस्ट फ्लोरों में 53 साल के 53 years old के विजय बाबू राम बंधु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मंगोल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 3 बजे उनकी पत्नी मिसिज मालिनी बंधु के मकान गांधी रोड अर्नेस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: आप सभी को नमस्कार और आदाब। इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आज हमारे साथ है हमारी टीम में है कादर कोदादीन, उरुसा है और हमारी प्रोड्यूसर है जिनेश। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल तैयार हैं ये प्रोग्राम सुनने के लिए। तो समाज एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्थिर तो नहीं रहती, वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारी लाइफ स्टाइल भी बदलती है और उन सब के साथ बदलता है हमारा समाज। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, हमारे रिश्ते भी यानी कि रिलेशनशिप्स और ख़ुद को देखने का जो हमारा नज़रिया ये भी बदल गई है और अलग अलग है। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ मीडिया हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा तो नहीं है बल्कि हमारी सच्चाई, हमारी पहचान, हमारी जो सोशल रियलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो सोशियोलॉजी के इस बदलते समाज को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये सवाल ये उठता है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी और मीडिया ने सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन बदली है या फिर हमारे समाज के नियम, हमारे रिश्ते, हमारे मूल्य और पहचान को भी बदल डाली है। तो इसी विषय से संबंधित पोस्ट मॉडर्निज्म पर ये चर्चा हमने रखा है। और आज हर्ष की बात है कि हमारे साथ एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाज शास्त्री हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक रिसर्चर हैं, जियोग्राफर हैं और मॉरिशस विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के एक फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं। आप हैं श्री हेमंत रामगोबीन जी। तो हमारे इस प्रोग्राम में हेमंत जी आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। तो जैसे कि हमने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म, शायद ये जो शब्द है बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो हेमंत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज के हमने के जो विषय है पोस्ट मॉडर्निज्म, तो शुरुआत कब से हो, एक सरल भाषा में बताएं कुछ।
1: पोस्ट मॉडर्निज्म समझने के लिए, जैसे वो शब्द कह रहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद, तो ये उसको पोस्ट मॉडर्निज्म समझने के लिए हमको समझना चाहिए मॉडर्निज्म क्या है। देखिए, हमारे मानव का इतिहास में बहुत से बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसको कहते हैं हम रेवोल्यूशन
0: जी।
1: रेवोल्यूशन पहला ऐसा देखेंगे तो चार, लगभग चार रेवोल्यूशन हुए हैं। पहला रेवोल्यूशन जब

0: एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ. तो एग्रीकल्चर जब लोग मनुष्य
1: मैनुअल वर्कर्स
0: नहीं नहीं मतलब बोने लगे खाने के लिए एक ही जगह में, तो वहाँ से सेटल लाइफ विलेजर्स का कल्चर शुरू हुआ. सेटल लाइफ ये लगभग 12,000 साल पहले, इसको कहते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन. उसके बाद एक 1500 अप्रोक्सीमेटली में 1500 ये अभी कहें सौ जैसे बोलते हैं, यहाँ पर एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ. साइंटिफिक रेवोल्यूशन उसका मतलब कभी भी हमारी हिस्ट्री में साइंस नहीं था. साइंस मतलब वेरिफिकेशन, कैसे बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस, ये कह रहे हैं आप ठीक है लेकिन उसका सबूत क्या है. तो इससे एक दूसरा सोच का ये धारा बहा, एक दूसरे विचार का धारा बहा. उसके कारण बहुत से इन्वेंशंस हुए. एक एक अनुभव दे रहा हूँ मैं आपको. 1543 में पहले बार एक साइंटिस्ट ने कहा कि देखो हमारे धरती जो है ना वो सूर्य का चक्कर करता है.
1: अच्छा.
0: सूर्य धरती का चक्कर नहीं करता है. ये सब जितना कहते हैं जितना ये सोच है सब बदल गया. हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स.
1: ओके.
0: उसके कारण हमें बहुत से इन्वेंशन हुआ. मशीन कैसे लोहा हुआ बनाते हैं, कैसे कोल यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए. तो उसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ
1: जी.
0: 1750 में शुरू हुआ इंग्लैंड में और यूरोप में फैल गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों रेवोल्यूशन है, क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे सब कुछ हमारे हाथों से बनते थे. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन बनने लगे. ये जो रेवोल्यूशन है बहुत महत्व है हमारे जीवन में, मनुष्य का जीवन में. एक अनुभव दे रहा हूँ आप. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जब शुरू हुआ भारत में, एक मैन एक आदमी पुरुष उसका कैसे बोलते हैं उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स था. अभी लगभग 75 है. मॉरिशस इंग्लैंड में अभी 80 हो गया है अप्रोक्सीमेटली. तो क्यों इतना चेंज हुआ, क्योंकि हमारा लिविंग कंडीशन सब बदल गया
1: जी.
0: अच्छे खाना खाना का वो सिक्योरिटी, अच्छे जीने का जगह, दवाई का इन्वेंशन, क्लीनलीनेस सब कुछ. और ये जो अभी का जो जीवन, अभी का जो दुनिया हम देख रहे हैं, बड़ा बड़ा हवाई जहाज, बहुत बड़े बड़े शहर, टेक्नोलॉजी मशीन्स, बहुत सुंदर गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल,
1: तो इन सब डेवलपमेंट से हमने के समाज कैसे प्रभावित होगा?
0: ये सब डेवलपमेंट जो है, इतना डेवलपमेंट है, उसका एज सिर्फ 275 साल है. उससे पहले ये सब कुछ नहीं था. सब पूरा जैसे कहा कि एग्रीकल्चर था, गांव था. ये जो सिविलाइजेशन है एकदम नया है. अभी बहुत थोड़ा समय में इतना डेवलपमेंट हुआ है. और ये जो अभी का समय जो कहते हैं, आपने वो प्रश्न पूछे, तो 1750 से पहले उसको ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते थे, प्री मॉडर्न. और अभी 1750 से 1970 तक इसको मॉडर्निटी कहते हैं, मॉडर्न पीरियड. और क्योंकि और एक रेवोल्यूशन हो गया है एक तरफ से, उसको कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन
1: जी.
0: डिजिटल रेवोल्यूशन कॉमन पॉलॉन्स में कैसे बोलते हैं, वो सब कुछ वो डिजिटलाइज हो गया, 01 टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन. ओके. ये लगभग 1971 से शुरू हुआ. तो इसमें रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर का, लैपटॉप का. देखिए छोटा जो लैपटॉप ने मतलब पर्सनल कंप्यूटर, उससे पहले एक कंप्यूटर का साइज लगभग था एक रूम के बराबर. उसके बाद एक टेबल पर रख सकते थे. उसके बाद आया इंटरनेट. आज वही कंप्यूटर हमारे पॉकेट में है,
1: मोबाइल.
0: हाँ. तो ये जो है डिजिटल रेवोल्यूशन. तो सोशलिज्म

0: इस कहते हैं ये जो हम एरा में जी रहे हैं एकदम अलग से है, कैसे बोलते हैं जो फ्रांसे में फ्रेंच में जो जामे वी। तो अभी क्या हो रहा है अपना जीवन में, ये अभी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जैसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अभी सोशियोलॉजिस्ट समझ रहे हैं कि क्या हो।
1: तो ये सब मेकानाइजेशन जब मजदूर लोग के रिप्लेस कर लग तो एक कॉन्सिक्वेंस कौन चीज रहा
0: नहीं, तब जब मजदूर लोग के रिप्लेस हो तो कॉन्सिक्वेंस मतलब बहुत प्रोडक्शन और चीप उसका प्राइस। इंग्लैंड में जब शुरू हुआ तो बहुत कुछ बनाने लगे, पूरा दुनिया में बेचने लगे, और मेकानाइजेशन मतलब अभी यो यूज़ ऑफ एनर्जी कुआं से कोल, अभी बाद में एक 100 साल के बाद में डीजल शुरू हुआ, तब अभी बहुत से डेरिवेटिव सही एनर्जी का, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है बहुत सुधर गया। वो धीरे धीरे ये जो मशीन से बने का चीज़ बहुत फैल गया दुनिया भर में, मैं कहते हैं ये 20th century में, अभी मॉरिशस में ही हमारे यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1985 और 1995 के बीच में, बहुत से लीजिंग फैक्ट्रीज खुला था, वो टेक्सटाइल मशीनरी एंड सो ऑन। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम ख़राब है, कैसे अभी मैंने आपको बताया कि लोग ज़्यादा अच्छा से जीने लगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम भी आया है। अभी हम इतना पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जो जो धरती माता है वो बहुत अफेक्ट हो गया है। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी देखिए नेपाल में क्या हो गया, अभी इतना गर्मी था यूरोप में, तो उसका परिणाम है उसका। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि देखो क्या हो गया, साइंस ने हमारा बहुत सुधारा और एट द सेम टाइम बहुत कुछ बिगाड़ दिया अपना जीवन में
1: जी।
0: बिगाड़ दिया मतलब बीमारी आया है, पोल्यूशन आया है, लेकिन ये हम क्या करें अभी उसका समस्या का वो हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन कठिन है अभी इतना पोल्यूशन। मैंने एक बार प्रोग्राम किया था वो क्लाइमेट चेंज के बारे में, कितना हम डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पर, तो ये सब साइंस का परिणाम है, लेकिन उससे जुड़े हुए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंज्यूमरिज्म। पोस्ट मॉडर्न लोग कहते हैं कि देखो आप कौन है, अभी आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप कितना अच्छा आदमी है, कितना वैल्यूफुल लाइफ जीते हैं, क्योंकि कितना इंटेलिजेंट है, नो। आपका आइडेंटिटी है क्या आपके पास है, व्हाट डू यू पोसेस, कैसा घर है आपका, कितना बड़ा गाड़ी है, कितना पैसा है, कितना बार इंग्लैंड कितना बार फ्रांस जाते हो टूरिज्म में, ये हमारा आइडेंटिटी है कंज्यूमरिज्म। और क्या किए हमने, अपने घर को वेयरहाउस बना दिया है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है हमारा आइडेंटिटी, मतलब देखो अपना अभी गाड़ी पर अपना नाम लिख देते हैं अपना आइडेंटिटी को पुश करने के लिए। तो सभी ये धाव पर है, सभी लोग भाग रहे हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा कंज्यूम किए, लेकिन वो अपने असलियत में हैप्पीनेस नहीं लाते।
1: तो इसी तरह हमारी जो मॉडर्न दुनिया में मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है,
0: बहुत बड़ा योगदान है, मैं सहमत हूँ। अभी हम कह रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं, सिर्फ उससे पैदा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
1: AI आया है, टिकटॉक है, यूट्यूब है।
0: पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ था आपका फोटो, ये फिल्म सब रहे नेगेटिव पॉजिटिव, तब बाद में कलर फोटोग्राफी आया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे तो आपको मुस्कुरा देंगे पता होगा आपको कि कितने से सॉफ्टवेयर सब निकले, लेकिन उसका बहुत बहुत बेनिफिट्स है डिजिटल रेवोल्यूशन का, डिजिटलाइजेशन का बहुत से बेनिफिट्स है। वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। आपको एक अनुभव दे रहा हूँ, मेरे पास कोई ये फिगर है, आपको सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि 1998 में अपना डिजिटल रेवोल्यूशन का जो ये शुरू हुआ था,
1: ट्रेंड
0: नहीं उससे पहले शुरू हो गया था, लेकिन जब कनेक्शन शुरू हुआ था इंटरनेट में, इंटरनेट से 1998 में 140

0: मिलियन लोग कनेक्टेड थे इंटरनेट से, 2000 में 360 मिलियन, और 2024 में 5.5 बिलियन, अभी लगभग 26 में 6 बिलियन। हमारे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है 8.3 बिलियन, मतलब नियरली 70% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो क्या प्रभाव होगा उससे? बहुत प्रभाव है। कैसे बोलते हैं अभी, सेजू जामे भी, इट हैपन नेवर बिफोर। और उसका इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट, कैसे मैं बोला, कंज्यूमरिज्म। आपको दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, घर ही से खरीदो। शॉपिंग कहाँ से? घर से। पूरा दुनिया का माल है सब। पैसा कैसे भरने का? डिजिटल पेमेंट। तो ऐसा कभी नहीं था, और उसका प्रभाव जरूरी होगी मनुष्य के जीवन पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसके सोशियोलॉजिस्ट को कहते हैं ये मीडिया का है, इट फॉल्स अंडर मीडिया, डिजिटल मीडिया। और शायद मैंने पहले कहा होगा कोई दूसरा प्रोग्राम में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस मीन सामाजिक संस्थान, मतलब मेजर इंस्टीट्यूशंस, वही मतलब समाज को चलाते हैं। पहला है परिवार, फैमिली। दूसरा है वर्क प्लेस, जहाँ पर काम करते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे कम्युनिज्म है कि कैपिटलिज्म कि डेमोक्रेसी है। तीसरा है एजुकेशन, चौथा है रिलीजन, और पांचवा है मीडिया। तो अभी 1970 तक, अभी ये समाजशास्त्री लोग बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, सबसे महत्व संस्थान, इंस्टीट्यूशन, वो परिवार था।
1: परिवार था।
0: अभी सबसे महत्व इंस्टीट्यूशन मीडिया हो गया है। तो परिवार में वैल्यूज था, वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस था, मीडिया में वैल्यूज है? आप ही कह सकते हैं, कहाँ है वैल्यूज मीडिया का?
1: लेकिन ये सच बात है कि अभी जब कोई उठता है, जागता है, तो मोबाइल उसके हाथ में है। सोने से पहले भी मोबाइल ही सब, चाहे यहीं तक कि आज के ई जवान पीढ़ी जो इन बात कैसे हम नहीं सकब जा लोग के मतलब हकीकत बतावे।
0: हमें को दूसरा, हमें को दूसरा शिव देवा थे तुम्हारा बहन जी, एगो एगो एक कंपैरिजन के तौर से एक, हाँ, रिसर्च, अमेरिकन रिसर्च कह रहे हैं कि 16 से 24 साल तक ये जो लोग हैं दुनिया में, 6.5 घंटा मोबाइल फोन पर रहते हैं। 25 से 54 तक, 25 to 54, 4 से 5 घंटा, 54 से 64 तक 4 घंटा। और बच्चों को देखेंगे तो 8 से 10 साल लगभग 6 घंटा, 11 से 14 साल 9 घंटा, और 15 से 18 7.5 घंटा। तो इसका परिणाम जरूरी होगा। परिवार तो लगभग क्या करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बहुत कम हो
1: रहा
0: है। अभी देखेंगे तो कहीं भी जाओ, मिथको में जाओ, सी साइड पर जाओ, पूजा में जाओ, सब लोग सेलफोन ही दिख रहे हैं। वही आज का भगवान बन गया है। दर्शन करते हैं सुबह, जैसे आपने कहा, पहला, और सोते से, सोने से पहले उसी से जीते हैं। तो उसका परिणाम देखो, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो बहुत साल पहले, उसके मृत्यु के लगभग 2-3 साल पहले, उन्होंने लिख दिया था कि द डे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, वी शैल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। अभी मैं एक अनुभव, ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जो छोटा बच्चे हैं 3 साल 4 साल, वो उनका भाषा का मास्टरी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वही तो सेलफोन पर है, माता जी भी सेलफोन पर हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के द्वारा ये जो लैंग्वेज स्किल्स है डेवलप होता है, और सिर्फ वही नहीं,

0: सोचने का स्किल।
1: तो एक वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत हद तक परिवार, नेबरहुड, कम्युनिटी और फेस टू फेस रिलेशनशिप के आसपास बनी हुई थी। फिर टेलीविजन आया, रेडियो और सिनेमा ने हमारी दुनिया को और बड़ा किया और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मीडिया हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि हमारी सोशल रियलिटी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम अपने श्रोताओं और दर्शकों की मांग है, अगर इस विषय पर आप कोई मतलब कोई आइडिया देना चाहेंगे या फिर कोई सवाल करना चाहेंगे हमारे सोशियोलॉजिस्ट से, बेझिझक 402-808-5 पर आप फ़ोन कर सकते हैं, 402-808-5 पर फ़ोन कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, कार्डे से गुजारिश है।

0: प्रोग्राम में आप सबों का दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज श्री हेमंत रामगोविंद जी हमारे साथ हैं जो एक समाज शास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने बता दीजा कैसे ई मॉडर्न दुनिया में मीडिया के कितना कंट्रीब्यूशन बा, इस पर काफ़ी चर्चा हो बा। तो हेमंत जी एगो व्यक्ति के सोच बदले खातिर पहला चाहेला पूरा समाज ही के सोच बदले के, इस पर आप कुछ सकबा बोले।
1: हाँ नहीं, वो उतना मतलब ऑटोमेटिक नहीं
0: है। नहीं,
1: अभी जैसे हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, तो एक करैक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जैसे कि उन लोग को जो जब रिसर्च किए हैं कि अभी वो जो कम्युनिटी लाइफ है इट इज़ प्रैक्टिकली इनएग्जिस्टेंट। लोग अपने कैसे बोलते हैं वो फैमिली सेंटर लाइफ जीते हैं और बहुत से कैसे वो इंग्लैंड ये इंग्लिश में इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं।
0: ये क्या है इस पर?
1: इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद के जीवन पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर नहीं है। कैसे अब पहले एक्सटेंडेड फैमिली था, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, तो अब वो न्यूक्लियर फैमिली भी वो पोता ये सेलफोन से बात करते हैं, जूम कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, ये सब सुविधा है, लेकिन आना जाना बहुत कम है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। यही सेलफोन पकड़ते हैं सुबह और यही सेलफोन वही दौड़ाता है। वो तो मतलब ये सब जितना बदलाव है अभी शुरू हो गया, अभी हो रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कैसे बोलते हैं स्लेव बने, इसको लेके चलते रहे। ये अपने पर निर्भर है, मेरा जीवन है, मैं इस पर मुझ पर निर्भर है कि मैं इसका स्लेव बनूं या न बनूं। कैसे हम ये डिजिटल रेवोल्यूशन से
0: आप पर निर्भर है कि आप क्या करें क्या न करें।
1: कैसे बोलते हैं फैमिली में एक परिवार में कोई अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब कब सेलफोन यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं, और वो जो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अभी मैंने एक पेपर पढ़ा था, वो कैसे वो चाइल्ड और मदर रिलेशनशिप के बीच में जब बच्चे छोटा है तो ये यूज़ ऑफ सेलफोन्स कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि माता जी भी हैं सेलफोन पर और एक दूसरा सेलफोन बच्चों को दे देती है, तो छोटे से ही उसका सोशलाइजेशन हो रहा है कि वो सेलफोन यूज़ करे, दैट इज़ समथिंग नॉर्मल, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है। तो हम अभी के समय में वो समाज बदलने का काफ़ी कठिन है। मतलब खुद से देखो, पहले हम कितना पुस्तक पढ़ते थे, अभी सब पुस्तक बंद रखा है, किसी के यहाँ ये हैबिट नहीं है। और सोचते हैं कि क्या पुस्तक पढ़ते हो तुम, सेलफोन देखो, वो सेलफोन यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड।
0: लेकिन रिसर्च के माध्यम से देखा है कि अगर आप पुस्तक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, पहले की तरह ये ज़्यादा फायदेमंद है।
1: वो उसका असर जब नहीं पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, उनका पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। पहले लड़की लोग ज़्यादा पुस्तक पढ़ते थे, अभी लड़की लोग ज़्यादा सेलफोन पर है।

0: और ये भी देखा गया है कि ज्यादा बहुत लिखना चाहिए, लिख कर हाँ, इसमें भी कुछ
1: ये एक पहले बहुत एज ओल्ड सीक्रेट है, जब कुछ आपको मेमोराइज करना चाहिए पहले आपको अपना दिमाग में लिख देना चाहिए। जब कागज पर लिखते हैं तो दिमाग में भी लिखते हैं। तो अभी देखिए रिसर्च के द्वारा जो हुआ है, अभी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने डिसीजन लिया है कि थोड़ा सा हटें ये डिजिटल रेवोल्यूशन से, ये टैबलेट फैबलेट सेलफोन से, ये जूम कम्युनिकेशन से, और कैसे बोलते हैं वो जैसे पहले था नोटबुक पुस्तक कॉपी बुक लिखने का, वो फिर चला रहे सब वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन।
0: तो ये तो यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन हम लोगों की जो मॉरिशस में कौन सी सब बोले सोल्यूशन कौन सी, कौन सा समाधान सकेला करी हमने?
1: देखो हमारा हम भी वही वही
0: कंटिन्यू कर रही है उसमें,
1: हम भी वही जहाज में है, मतलब कैसे वो मिसयूज ऑफ
0: मोबाइल वगैरह
1: मोबाइल, और सोचते हैं कि देखो एक फेस टू फेस इंटरक्शन, फेस टू फेस टीचिंग और डिजिटल कैसे यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब जूम पर या इंटरनेट पर टीचिंग, वो बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए हम पर निर्भर हैं, वो बहुत सुविधा है। एक सेलफोन पर देखेंगे तो लगभग 2-3 हज़ार एप्लीकेशंस हो सकता है, 2-3 हज़ार यूजर्स। ये तो टेक्नोलॉजी बनाया है, मनुष्य बनाया, लेकिन उसको उपयोग करना जानना चाहिए,
0: मतलब सही समय पर उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए।
1: मैं आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़े समय पहले हर एक इंडिविजुअल का एक हॉबी था, किसी का हॉबी गार्डनिंग था, किसी का हॉबी वो पढ़ाई था, किसी का हॉबी वो गेम खेलने का या वॉक करने जाने का। तो अभी ये जो ये टेक्नोलॉजी जो आया है, डिजिटल रेवोल्यूशन, सेलफोन, ये इतना पता नहीं कितना टीवी चैनल थे, टेलीविज़न कनेक्शन में, केबल कनेक्शन में, तो ये सब इफेक्ट हुआ है अपना जो खुद का जो ये जो
0: बर्ताव, वो
1: एग्जिस्टेंस ऑफ वेल बीइंग जैसे बोलते हैं, क्योंकि जब एक आपको एक अच्छा हॉबी होगा तो आपको उसमें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलता है, यू गेट ए सम सॉर्ट ऑफ ए पीस। तो ये डिजिटल ये डिवाइसेस में पीस नहीं मिलता है, उसमें स्ट्रेस मिलता है, उसमें थोड़े समय के लिए डोपामिन मिलता है। कैसे आप कहेंगे कि जो जिसको डायबिटीज है उसको लड्डू बहुत पसंद है, चीनी का लड्डू बहुत पसंद है, जब वो खा लेता है उसको इतना अच्छा लगता है, तो वैसे ही कभी भी वो सेलफोन यूज़ का बहुत अच्छा लगता है उसको, उसमें डोपामिन आता है, और एक भय होता है कि मैं मुझे देखना है सेलफोन ताकि मुझे आई डोंट मिस एनीथिंग, तो वो इम्पल्सिव हो जाता है, 2 बजे समय वो उसका वो नींद छूट गया तो वो सेलफोन पकड़ते हैं। तो ये वी हैव टू कैसे बोलते हैं अपने आप पर निर्भर है, उसके लिए सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स करना चाहिए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हमको पता है लेकिन करते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक रूटीन जो एस्टैब्लिश होना चाहिए अपना अच्छा जीवन के लिए, उसमें ये डिजिटल एडिक्शन जैसे कहते हैं उसमें नहीं आना चाहिए, तब आपका ये मतलब यू आर यूजिंग the you are having the benefits of a digital connection, mm-hmm. you're having benefits of digital technology, at the same time you're living your life properly, so this is very important. Lekin acha theek hai jab adults ko kehte hain ki okay you have to use your cell phone in a disciplined way, to bachcho ko kya karenge? Bachcho mein 18 saal se pehle jab bachche hote hain ya 6 saal 9 saal adolescent, unke liye to control hona chahiye, कंट्रोल माता पिता से, स्कूल में ये कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन पर बहुत से इफ़ेक्ट है, देखो डिजिटल वीडियो गेम्स एक्सेट्रा, ये सब उनका दिमाग पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके लिस्ट में है कि एक बीमारी हो सकता है, मेंटल बीमारी हो सकता है वीडियो, ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से, इट इज़ देयर। तो पहले ही सब नहीं था, तो कौन हानिकारक है हमारे परिवार।

0: बार हमारे बच्चे, अब देखें जब आप शादी में कभी जाएंगे, कभी मैं ने ऑब्जर्वेशन किया है, जवान लोग नहीं दिखते हैं सेरेमनी में, कहाँ है वो, एक कमरे में है, सभी अपना सेलफोन पे कनेक्टेड। अगर आपको एक जवान को दुखी करना चाहते हो, उसका फ़ोन ले लो, वो बीमार पड़ जाएगा, या इंटरनेट काट दो, वो बीमार पड़ जाएगा। तो इतना डिपेंडेंसी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये अपना आने वाली पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ी को सोचना चाहिए, परिवार को सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी री एस्टैब्लिश्ड। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगेगा कि आपके सामने आपके कोई परिवार मेंबर है, बैठा है, लेकिन वो बातचीत नहीं कर रहा है?
1: तो वो तो एजुकेशन के हिसाब से आप बता रही हैं कि उसको मतलब जागरूक बढ़ाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हो भी रहा है। हो रहा है,
0: हमको पता है ये सब, ये खराब है, इतना यूज करना खराब है। देखो मैंने देखा अभी आते समय एक मोटरसाइकिलिस्ट, एक हाथ से वो पकड़ा है उसका ये डायरेक्शन, एक हाथ में सेलफोन है मोटरसाइकिल पर। गाड़ी में तो ये लॉ है, रूल्स है, लेकिन अभी के समय में, पोस्ट मॉडर्निज्म के समय में, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते,
1: कर रही है
0: नहीं मानते हैं, as if it doesn't exist, values को नहीं मानते हैं कि ये मुझे करना, ये ऐसा करना चाहिए था, ये मैं नहीं करता, कौन देखता है? तो values, family values, rules and regulations everywhere, on the road, in the shops, everywhere, on the beach, rules and regulations लोग मानते नहीं हैं, सभी लोग बहुत ये everybody is in a hurry। और सोचने का समय नहीं है, जो करना है वो हाल ही जल्दी से करो।
1: अभी अभी के ई भागदौड़ जिंदगी में,
0: हाँ जी,
1: एगो व्यक्ति के चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ओके कैसे चाहेला अडाप्टे होइके,
0: ओके कैसे अडाप्टे होके चाहेला, देखो ये छोटा से शुरू होता है। देखिए आगे, पहले मुझे याद है जब जब बच्चे को खिलाते थे तो उसको चंदा मामा दिखाते थे, गाते थे, अभी सेलफोन दे देते हैं, और जैसे वो सेलफोन वापस लेंगे तो वो
1: रोने लगेगा।
0: तो ये हैबिट मतलब ये इसको
1: कम करना चाहिए, बहुत
0: मतलब एक री एजुकेशन करना चाहिए अपना, जो वो सोशलाइजेशन है बच्चों के, अभी शायद हो रहा है क्योंकि रिसर्च बता रहा है कितना नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहा है बच्चों पर। और
1: स्कूल्स में भी कुछ कहा गया कि मोबाइल को कम बच्चों को नहीं देना चाहिए क्लासेस में, ये सारा कुछ।
0: फ्रांस में देखो, फ्रांस में उन्होंने रिसर्च किया है, उनको ये यूरोप में पहले ये कंट्री जो है बहुत मतलब द वेकअप कॉल किया कि देखो बच्चों पर बहुत असर हुआ है, क्योंकि बच्चे लोग सोच नहीं पा रहे हैं, कैसे बोलते हैं उसका कॉग्निटिव प्रोसेस में बहुत इफेक्ट है, क्योंकि उनको सब कुछ रेडी, स्क्रोलिंग से सब कुछ रेडी में मिल रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख, उनको कभी सोचने का, अब जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो सोचना चाहिए, मेमोरी में आने के लिए सोचना चाहिए, रीडिंग के लिए रिपीटिटिव एक्शन सोचना चाहिए, तो बहुत इफेक्ट।
1: कभी कभी छोटे से इस कैलकुलेशन के लिए भी सब लेते हैं।
0: हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा डिबेट है, अभी कोई कोई एग्जाम में कैलकुलेशन यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारा जो दिमाग है बहन जी, हमारा जो दिमाग है उसको फिट रखने के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को कहना को उनको ये एडवाइस देते हैं कि देखो आपको आपका दिमाग जवान रखने के लिए आपको कुछ नए सीखना चाहिए, तो बच्चे ही नई नई सीख रहे हैं, जो कुछ रहा है उस पर वही देख रहे हैं, तो नहीं अच्छा है। मतलब कुछ आगे पहले बच्चों को ये म्यूज़िक सिखाया जाता था, बहुत कम जाते हैं अभी, बहुत कम म्यूज़िक या हॉबी या एक्सरसाइज, तो सब कैसे बोलते हैं, इट इज़ अ डिजिटल रेवोल्यूशन, स्लेवरी कैसे हैं, डिजिटल एडिक्शन। तो ये उसका संविधान क्या है, ये हम पर निर्भर है एज ए पेरेंट। मेरा भी बच्चे थे जब वो स्कूल जाते थे, मैं एक नोकिया 33 जिस कैसे 3310 सिर्फ 27 फोन नंबर्स, इंटरनेट कनेक्शन कुछ नहीं होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उसका प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा उनके सक्सेस में, एग्जामिनेशन में। तो कितने अभी पेरेंट्स वो कर रहे हैं, अभी तो कई कई बच्चे जाते हैं स्कूल 50,000 60,000

0: का फोन लेकर, अभी तो 4G बदलना चाहिए, अब 5G चाहिए, तो इज इट रियली नेसेसरी? ये क्वेश्चन है, लेकिन कोई पेरेंट्स देते हैं, वो इन पर निर्भर है। और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मैं आई अंडरस्टैंड कि अगर सभी के यहाँ फोन है, एक है, एक यहाँ फोन नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और उसके सेलफोन बन रहा है, उसका मार्केटिंग भी करना चाहिए, बेचना भी चलना चाहिए, तो उनका भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कैसे बच्चों
1: से। अगर निष्कर्ष निकालना है तो बस यही कहेंगे कि हम लोग मतलब अब ये सारा कुछ अपने ऊपर है, हम लोग ही डिसाइड करना चाहिए।
0: सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पीपल हैव ए चॉइस, ये सब कुछ है, ये इतना एप्लीकेशंस है, इतना गेम्स है, ये नेटफ्लिक्स है, ये वो है सब, मेरे पर निर्भर है कैसे मैं अपना जीवन को ले जाऊँ, ये मेरे पर निर्भर है। कितनों भी आपको कैसे मैं कहा कि तभी कि इस एरा में लोग सुनते नहीं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वैल्यूफुल लिविंग नहीं जीते हैं, वो खुद का सीख देते हैं।
1: बिल्कुल, हम न्यूज़ को मीडिया से जानते हैं, ट्रेंड्स मीडिया से सीखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर देखते भी हैं, और अपनी पहचान भी कभी कभी लाइक्स, फॉलोअर्स, ऑनलाइन इमेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं।
0: हाँ, क्योंकि अपना डिजिटल आइडेंटिटी हो गया है। अभी आपसे पूछूंगा बहन जी, आपका कितना एड्रेस है, कितना एड्रेस है आपका? एक ही एड्रेस है? नहीं, ईमेल एड्रेस है, इंस्टाग्राम पर एड्रेस है, फेसबुक पर है कि नहीं, तो हम पता नहीं कहाँ रहते हम। एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी रहते हैं, वी लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड, इतना एड्रेस है। और किसको इम्प्रेस करते हैं, दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, अपना नेबर को नहीं, नेबर यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे में क्या, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो इंटरनेट को का इन्वेंशन किया था उसको पता नहीं था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अभी अपना पूरा दुनिया, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए विलेज, एक गांव। कैसे पहले एक गांव था मॉरिशस में, एक गांव का निवासी, उसको उनको सब पता है कि कौन कौन रहता है गांव में, क्या नाम है उसका, क्या करता है। अभी लगभग ऐसा हो गया है, वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, लेकिन अंत में अपना जीवन बेहतर हो रहा है उससे?
1: नहीं।
0: कितना बेहतर हो रहा है, अपना परिवार का जीवन बेहतर हो रहा है?
1: बहुत से क्वेश्चन मार्क्स होता है, बहुत से क्वेश्चन आता है, हम सवाल होता है कि क्या कैसे हम लोग जी रहे हैं।
0: हाँ।
1: शायद सब भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के भी ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग जी रहे हैं। लेकिन
0: एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अभी गाड़ी, जब गाड़ी चलाते हैं तो कितने लोग सेलफोन यूज करते हैं। अभी देखो पीछे से टकराव कितना हुआ है, पीछे से गाड़ी का पीछे से टकराव, इससे इट्स वेरी कॉमन। ओके, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब लाइट रेड होता है तो ठीक है, हमको ठहरना चाहिए, तो वो मैसेज भी दा कर रहे हैं, वो पीछे वाला वो फोन बजाते हैं, तो दिस इज वेरी बैड।
1: मतलब जितना कुछ होता है हम लोग ही जिम्मेदार हैं।
0: देखो जान है तो जहान है, एक बहुत पुराना कहावत है, हमें थोड़ा सा अच्छा से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर एक इमरजेंसी फ़ोन चलाया आप गाड़ी में, अगर आप गाड़ी में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो रुको, उसको रुको, कुछ प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर साइन दे दो कि देखो हम जाओ, मुझे एक इमरजेंसी है। आप अपना ये जो हज़ार लैंप लगा सकते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि दूसरों को वो उनका ये जो रिस्क हो वो बढ़ जाता है। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या इफेक्ट है ये डिजिटल रेवोल्यूशन इन दिस पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, क्या इफेक्ट है परिवार पर, बच्चे पर, काम पर, रिलेशनशिप पर, डिवोर्स पर, सब कुछ पर। बहुत अभी बुज़ुर्ग लोग कम यूज़ करते हैं सेलफोन, लेकिन उनका उतना जिम्मेदारी नहीं होता है, दे आर रिलेटिवली फ्री, और वो जो करते आ रहे हैं छोटा से उनका जो हॉबी वो करेंगे, क्योंकि उनको इसमें सुकून नहीं मिला है, नहीं मिलता है, जो अपने जो खुशी खुशी कुछ करते हैं गार्डनिंग उसमें मिलता है।

0: लेकिन बच्चों को छोटा ही से सोशलाइज हो जाता है ना सेल फोन। कोई कोई बच्चे हैं जो जो जो जिसको हम जेंजी बोलते हैं, जेंजी जो अभी बिटवीन 2000 एंड 2013 जेंजी, वो सोचते हैं कि हमेशा सेल फोन था, हमेशा इंटरनेट था, हमेशा वीडियो।
1: क्योंकि जनरेशन होता है ना,
0: हाँ, वो उनको पेशेंस नहीं है बिल्कुल, वो पकड़ते रहे थे, तो कैसा उनमें ह्यूमन वैल्यूज कैसे आएगा, नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो उसको रिवर्स गियर में लाने का बहुत समय लगेगा, हो सकता है, लेकिन कैसे बोले, वो रिवर्स गियर आ रहा है यूरोप से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि बच्चों पर बहुत बहुत असर हो रहा है, ये बहुत से प्रॉब्लम है, साइबर बुलिंग एक्सेट्रा। लेकिन प्राइवेसी है डे टू डे लाइफ में, वो कनेक्शन है, लेकिन इंटरनेट पर यस कनेक्शन, कितना लाइक्स है, जैसे आपने बोला वो पिक्चर लगाने का फेसबुक, मैं यहाँ हूँ, मैं क्या जरूरी है इसकी, इस इट नेसेसरी।
1: तो सब सोचने वाली बात है, इस चर्चा से यही सीख मिली है कि सोचने वाली बात है, और
0: हम सोचते हैं कि दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अस आवर हैप्पीनेस, दैट इज नॉट इन हैप्पीनेस, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि, मुझे याद है जब दो एक रेडियो प्रोग्राम पर हमने हम ये सेल फोन पर बात करी, तब 4G 5G सब कुछ नहीं था, इंटरनेट था लेकिन उतना इफेक्ट नहीं था, उतना कनेक्टिविटी नहीं था। तो एक महाशय ने फ़ोन किया, तो वो बोला क्या आप इतना वो डायबोलाइज कर रहे हो, जबरी से सेल फोन का, उसमें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी का समय दूसरा है, उसमें बहुत से अच्छे कुछ है। देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें वैल्यूज नहीं है,
1: अच्छा।
0: वो झूठ बोलता है कभी।
1: अच्छा, अंत में हमारे श्रोता और दर्शक को आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना
0: चाहेंगे? मैं संदेश दे रहा हूँ कि वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एज, उसमें बहुत फायदा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है, और अगर हम उसका नुकसान से बचना चाहते हैं तो वी हैव टू टर्न टू द ओरिजिनल फैमिली वैल्यूज, ओरिजिनल ह्यूमन वैल्यूज। तो ये कंबाइन करेंगे डिजिटल रेवोल्यूशन का बेनिफिट्स और अपना ट्रेडिशनल ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ, तो अपना जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। आप कितने भी 5G 10G भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एंकर्ड होना चाहिए अपना जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या अपना चाहते हैं, कैसे बच्चा चाहते हैं, कैसे परिवार चाहते हैं, कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, कैसे अपना जीवन अच्छा से ले जाना चाहते हैं, कैसे दूसरों का जीवन उसमें रिस्क नहीं लाना चाहते हैं, टू एंडेंजर द लाइफ ऑफ अदर्स, कैसे बच्चे का वो उनका जीवन डिस्ट्रॉय नहीं होगा सेल फोन से। तो यही मेरा संदेश है।
1: हाँ, तो पोस्ट मॉडर्निज्म इस पर बहुत बहुत वास्त है, विशाल विषय है, तो उस पर बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जैसे सब लोग जानते हैं डिजिटलाइजेशन मीडिया के जो दौर है, इसी में हम अपने परिवार अपना सारा कुछ इस पर बढ़ते जा रही है, फिर भी देखते हैं कि कुछ मतलब परिवार में खतरा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सही क्या गलत, ये जैसे श्री हेमंत राम गोविंद जी ने बताया, ये सब हम लोगों पर निर्भर है। तो याद रखिए, समाज को समझना असल में अपने आप को समझने की एक कोशिश भी है। तो आज के हमारे वैसे अतिथि श्री हेमंत राम गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस मतलब इतनी इंसाइटफुल बातचीत के लिए, और हमारे साथ कादेर उरुसा और हमारे जो प्रोड्यूसर है जिनेश, उन लोग को धन्यवाद देते हैं, और जितने लोगों ने हमारा साथ दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार और आदाब।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, चार बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस, रेडरिक्स और सैम पोंडों के लिए तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी।

चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी कल शुक्रवार सुबह 4 बजे से रविवार रात 10 बजे तक लागू रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इलाके में एक ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि कल से एक शक्तिशाली एंटी साइक्लोन भी दक्षिण पश्चिम से इलाके के करीब आएगा।

0: ली सितंबर से क्यूपिप और गेजवी के बीच सफर आसान होने जा रहा है। लाइन 2 पर नई सीधी सेवा शुरू होगी, यानी यात्रियों को रोजल सेंट्रल में मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये सेवा रास्ते की सभी स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस सीधी सेवा को आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा सकता है। कटरबोन पुलिस स्टेशन से कल फरार हुआ एक कैदी आज सुबह फिर पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गजिदौस के निधि कटरबोन में कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। चोरी और एक पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में उसे हिरासत में रखा गया था। तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद उसे विक्टोरिया अस्पताल भी ले जाया गया था। बाद में उसे कटरबोन पुलिस थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ के दौरान वो हथकड़ी लगे होने के बावजूद फरार हो गया। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ते दबाव के बीच मीटा ने अमेरिका में $18 बिलियन तक के समझौते पर सहमति जताई है। मामला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 13 साल से कम उम्र के लोगों की निजी जानकारी जुटाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा था। अमेरिका के 29 राज्यों ने मीटा के खिलाफ ये मामला उठाया था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: continuous music. RM3.
1: 4.96, 98.2 FM पर ये है MBC का म्यूजिकल चैनल रेडियो मनोरंजन स्वीकार की जॉर्ज प्रताप सिंह का प्यार नमस्कार वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम दिल से मिले दिल प्रोग्राम शाम के 4:03 से लेकर शाम के 5 बजे तक और आज है गुरुवार 27 अगस्त 2026. So wish you had a wonderful day and now it's going to you going to have a wonderful evening हमारे साथ एक घंटे तक romantic दुनिया में खो जाए romantic गीतों का सौगात हमने कराए है. Let's start the show with a wonderful and sweet voice of Shreya Ghoshal. फिल्म का नाम है देवदास. ये कैसा सिलसिला है चाहत का कि दिया बुझने वाला है पर दिया को बुझने नहीं दे रहे हैं क्योंकि किसी का इंतजार है पारो को देवदास का इंतजार है.

तो वो चाहता है कि वो अपने प्यार का इजहार करे और अगर लड़का शर्मीला हो तो वो बहुत समय लेता है प्यार का इजहार करने में। वैसे लड़के शर्मीले तो होते नहीं हैं पर कभी कभी एक आध लड़के शर्मीले होते हैं स्वभाव से, सो थोड़ा समय लगता है लड़के को प्रपोज करने के लिए। और ऐसे ही प्रपोजल चल रहा है इस अगले गीत में। लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है और उसे बता रहा है अपने दिल की हाल, दिल की बात। चलिए हम भी सुनते हैं कि लड़का रुबिया से क्या कहना चाहता है। ए हे

भाई पता ही नहीं चलता कि ये प्यार कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, किससे हो जाता है, बस प्यार हो जाता है और प्यार तो होना ही था। लड़का लड़की मिलते हैं, बातें होती है, फिर मीठी मीठी बातों के साथ लड़का लड़की में दोस्ती होती है और वो दोस्ती प्यार में बदल जाता है। होते होते प्यार हो गया ला ला ला ला ला। आपको भी याद है जब आपको पहली बार उनसे प्यार हुआ था तो आप कैसे झूम रहे थे, गा रहे थे और रात भर फोन पर उनसे बातें करते थे, कभी कभी उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर खूब प्यार करते थे। ऐसा ही होता है, ओए होए, होते होते प्यार हो गया, होते होते प्यार हो गया।

प्यार में बहुत सारे कसमें वादे लोग करते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा मैं तेरे वो करूंगा पर क्या समय आने पर प्यार करने वाला अपना वादा निभाता है या बीच राह में मझधार में छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है वाह रे भाई वाह रे वाह क्या जमाना आ गया जिससे प्यार किया जिसके साथ समय बिताया उसी का साथ छोड़ देते हैं लोग और किसी और का हो जाते हैं अब ऐसे में प्यार में विश्वास किया जाए या नहीं पर अक्सर मैं पर सच्चे दिल से अगर किसी प्यार करे तो उन कसमों वादों को निभाना तो पड़ता है आप चाहे माने या ना माने अगर आपने साथ फेरे लिए उसके साथ तो जब तक आपकी सांसों में सांसें हैं जब तक आपकी दिल की धड़कन में जब तक आपके दिल में धड़कन है तब तक आपको उनका साथ निभाना चाहिए चाहे वह बुरा समय हो या अच्छा समय हो आपको हर हाल में उनका साथ देना है और जो कस्मे वादे आपने किए हैं उन कस्मे वादों को निभाना है ज़रूर

जब लोग प्यार करते हैं ना तो प्यार में पागल हो जाते हैं और कहते हैं लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है हम तो नहीं मानते लव कैन नेवर बी ब्लाइंड प्यार तो हमें जो है खुशियां देता है जिंदगी में बाहर लाता है और जब हमें कोई मिल जाता है या मिल जाती है तो दिल कितना खुश होता है और जब प्यार हो जाता है तो कभी कभी हम पंछियों से बात करते हैं कभी तितलियों से बात करते हैं कभी कभी जलते दियों से बात करते हैं और कभी कभी हम अपने आप से बात करते हैं हेलो जी क्या बात है

लगता है आपको भी किसी से प्यार हो गया ऐसे ही आजकल आप जलते दिए से बात करते हैं बेचारा हमें भी बताइए जलते दिए से क्या बात करते हैं जी

बड़ी ही खट्टी मीठी होती है मोहब्बत, बहुत ही मीठा होता है ये प्यार और बहुत ही अच्छा होता है ये इश्क। इश्क मोहब्बत और प्यार जब हो जाता है इंसान को ना, तो इंसान नाच उठता है, गा उठता है, उससे ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। अगर आपका भी यही हाल है तो आप ही नाचिए गाइए और अपनी ढोलना को बुलाइए। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन। अब प्यार की धुन कैसी होती है, चलिए एक साथ सुनते हैं।

रक्षाबंधन पर आधारित इसी गीत के साथ ही हमारा आपका साथ यहीं पर पूरा होता है। दिल से मिल दिल कार्यक्रम यहीं समाप्त हो जाएगा और शाम के 4 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। कल शुक्रवार 28 अगस्त को हम मनाएंगे भाई बहन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। स्वयं बीसी की पूरी टीम की ओर से रेडियो मॉरिशस, रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन और हमारे डायरेक्टर और रेडियो की ओर से, हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। आशा करते हैं कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार आपके जीवन में प्यार और मिठास लाएगा और भाई बहन का रिश्ता यूं ही कायम रहे हमेशा हमेशा के लिए। सो भाइयों की ओर से बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन और बहनों की ओर से भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब शनिवार की सुबह 6 से 9 बजे MBC रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम का सुबह का नजराना। तब तक हमें दीजिए इजाजत और जय प्रताप सिंह सितारू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, हैप्पी रक्षाबंधन फॉर टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।

0: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। रामरसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन के लानों पर हार्दिक अभिवादन है। हार्दिक अभिवादन स्टूडियो में उपस्थित दो बहनों को भी, बहन माला जी और बहन शिवानी जी, जय सिया राम।
1: जय सियाराम।
0: आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की और श्री हनुमान जी की स्तुतियों के साथ, जिसके पश्चात हम सुनेंगे रामायण संदेश। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: राम रसधारा रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं राम रसधारा। ये प्रोग्राम चलता है हर गुरुवार की शाम को 5 से लेकर 5:50 पर। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दो बहनें, शिवानी और माला जी। और इन दोनों की वाणी में आप सुनने वाले हैं सुमेरनी। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम। देवी और सज्जनों, गुरु पूर्णिमा के बाद एक पूरे मास के दौरान हम सबों ने मनाया श्रावण मास, जिसके अंतर्गत हमने अपने अपने मंदिरों में रुद्र अभिषेक में भाग लिया, या तो सप्ताहांत के दौरान और खासकर सोमवार, श्रावण सोमवार के दिन हम में से बहुत से श्रद्धालुओं ने गंगा तालाब की यात्रा की, कुछ अपनी सवारी लेकर तो कुछ कांवर के साथ। इस पूरे एक महीने के दौरान हम सब शिव जी की भक्ति में लीन रहे। आज हम सब इस श्रावण मास की पूर्ति अर्थात श्रावण पूर्णिमा कर रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा के साथ अनेक महत्व त्योहार जुड़े हुए हैं, उनमें से एक है संस्कृत दिवस। हालांकि रामचरितमानस अधिकतः अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर एक कांड की शुरुआत में मंगलाचरण अथवा संस्कृत के श्लोक लिखे, जिसके माध्यम से वे उस कांड के प्रमुख देवता की वंदना करते हैं। बालकांड के मंगलाचरण के संस्कृत श्लोकों को सुनते हैं स्टूडियो में उपस्थित बहनों की वाणी में। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: पूर्णिमा के उपलक्ष पर पेश कर रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर ये विशेष राम रसधारा प्रोग्राम। श्रावणी पूर्णिमा की तिथि पर संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है और मानस का दूसरा कान जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो है सुंदर कान। सुंदर कान जिसमें बाबा ने भक्त शिरोमणि बजरंगबली हनुमान जी की गाथा गाई है। आज संस्कृत दिवस के इस पूर्व संध्या पर सुनते हैं इसी सुंदरकांड का प्रथम सोपान स्टूडियो में उपस्थित बहनों के संग। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
1: जय सियाराम।
2: शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम

0: रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय सियाराम, जय जय हनुमान।
1: अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनां गगन्यं सकलगुण निधानं वानरानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्यरूपी वन को संघर्ष करने वाले के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान जी का बखान इतने अति खूबसूरत शब्दों में करने के बाद बाबा मानस का एक सबसे लोकप्रिय और सबसे मनमोहक कान का वर्णन शुरू करते हैं, सुंदर कान। इसी सुंदर कान को आधार बनाकर बाबा तुलसी ने जाकर बाद में श्री हनुमान चालीसा की रचना की। जब वे सम्राट अकबर के कैदी थे, वही हनुमान चालीसा जो आज हर सनातनी के लिए एक शक्ति स्रोत है, गौरव है, प्रतिष्ठा है और आदर्श बन गया है। जय सियाराम, जय जय हनुमान।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

0: रसधारा।
1: देवी और सज्जनों, इसी के साथ ही आज का हमारा राम रसधारा ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होने को चला। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित दो बहनों को माला जी और शिवानी जी को उनकी उपस्थिति और उनके सहयोग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलते चलते देवी और सज्जनों, श्रावणी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को, रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं आप सबों को। अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के इस दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर नमस्ते हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा जैसे जानेला हर बरिस जब रक्षाबंधन के दिन आवेला तो ओकर संगे संगे एगो और बड़ा महत्वपूर्ण

0: पूर्ण दिन मनावल जाला और उह संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस हर बरिस रक्षाबंधन के संगे मनावल जाला और ई मानल जाला कि भाषा धरोहर के एगो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यूनेस्को ई भी मान के चलेला कि भाषा गल त संस्कृति गल। सब हिंदू धर्म ग्रंथ इस रक्षाबंधन के संगे मनावल जाला और ई मानल जाला कि भाषा धरोहर के एगो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यूनेस्को ई भी मान के चलेला कि भाषा गल त संस्कृति गल। सब हिंदू धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही लिखल गल बा। ई मानल जाला कि संस्कृत देवों की भाषा है। देवी देवता ई भाषा में बतियात रहलन जा और ई सब पुराना भाषा में अपन योगदान देले बा। हिंदू धर्म के सब पूजा पाठ सब मंत्र इही भाषा में होवेला। यज्ञ भी संस्कृत में भी होवेला। विश्व संस्कृत दिवस पहला हला 1969 में मनावल कर रहा। जैनिज्म बुद्धिज्म और सिखिज्म में भी बहुत मात्रा में संस्कृत के इस्तेमाल होवेला। भले ही आज संस्कृति एगो चलती फिरती भाषा गिनेला संस्कृत के, भले ही आज संस्कृत एगो चलती फिरती भाषा नहीं है, फिर भी भारत के 22 औपचारिक भाषा में से ई एगो है। और फिर उत्तराखंड के राज्य में संस्कृत भाषा के भरपूर प्रयोग होवेला। आज एकर जगह हमनी के जीवन में हिंदू परंपरा, दर्शन, धार्मिक पर्व और त्योहार में बा। और बहुत देश में ई स्कूल में पढ़ावल जाला। मॉरिशस में तो विश्वविद्यालय स्तर तक संस्कृत के पढ़ाई होवेला। मॉरिशस में संस्कृत स्पीकिंग यूनियन भी बा। और संस्कृत के जनक महर्षि पाणिनि हवन, आप ही संस्कृत के व्याकरण तय कर ले हवा। 5वीं और 6ठी सदी में महर्षि पाणिनि पुराना भारत के एगो प्रतिष्ठित ज्ञानी, संस्कृत व्याकरण रचयिता और भाषा के पंडित रलन। विश्व भर में भाषा के बचावे पर और बढ़ावा देवे पर जोर देवल जाला और संस्कृत भी इमें शामिल बा। भले ही भारत में आज 1% से कमती जनता ई भाषा बोलेला, पर एकर उच्चारण सब धार्मिक कथा, पूजा या हवन पर होवेला। पंडित और पुरोहित लोग के द्वारा करा गल ई उच्चारण हमने सब कोई सुनीला जा। सब मंत्र संस्कृत में है और MBC रेडियो पर संस्कृत भाषा के सिखावे पर भी प्रोग्राम चलेला। और संस्कृत के प्रभाव दूसरा भाषा पर भी बहुत हद तक होलबा, जैसे ग्रीक, लैटिन, पर्शियन और जर्मन पर। हिंदी के तो बात ही नहीं कर रहा। और भारत के जो कितने पूर्वी भाषा बा उस सब में संस्कृत के बहुत प्रभाव बा। देवनागरी लिपि में ई भाषा लिखाला और मॉरिशस जैसन छोटा देश में संस्कृत स्पीकिंग यूनियन के स्थापना विशेष उल्लेखनीय है। संस्कृत विश्व दिवस के आप सबको के बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

नमस्कार। जनवरी 2027 से लागू होने वाली स्टेट एज पेंशन की रकम अब लोग एसएपी एस्टीमेट के जरिए जान सकेंगे। पेंशन सुधार के तहत आगे योगदान पर आधारित पेंशन और भुगतान की व्यवस्था भी लाई जाएगी। कल से रविवार तक देश में ठंड बढ़ेगी, तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस गिरेगा और तेज हवा, बारिश तथा ऊंची समुद्री लहरों का असर रहेगा।

प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से फ्रांस के राजदूत ने आज पोर्टलुई में रस्मी मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत, 826 लोग अभी लापता और बड़े पैमाने पर तलाश अभियान जारी है। नमस्कार। जनवरी 2027 से लागू होने वाली स्टेट एज पेंशन के तहत लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, अब वे इसका अनुमान खुद लगा

0: एस्टिमेट सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू की गई है। इसे स्मार्टफोन या सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके आधिकारिक प्रस्तुति आज दोपहर बाद पोर्टली के ट्रेजरी बिल्डिंग में की गई। पेंशन सुधार के तहत आगे दो और बदलाव लाए जाएंगे। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो के अनुसार इनमें योगदान पर आधिकारिक पेंशन और रकम का भुगतान शामिल है। इन दोनों व्यवस्थाओं पर विशेषज्ञों की एक समिति काम कर रही है और इसके बारे में आने वाले दिनों में अधिक जानकारियां भी दी जाएंगी। बात करते हैं मौसम के बारे में। हम आपको बता रहे थे अभी सुर्खियों में कि कल से रविवार तक देश में ठंड बढ़ती वाली है और तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। एक शक्तिशाली तूफान एंटीसाइक्लोन के असर से तेज हवा चलेगी और बारिश भी होगी। दक्षिण पश्चिम के समुद्री इलाकों में 4 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लोगों को समुद्र में नहीं जाने और समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट सुनिए।
1: एलिनो तजन ऑसिलेशन और इंडियन ओशन डायपोल, इन वैज्ञानिक शब्दों के पीछे दो बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में समुद्र के तापमान, बारिश और मौसम की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन घटनाओं, इनके आपसी संबंध और खासकर मॉरिशस पर इनके संभावित प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्र के लोग ब्राजील स्थित इंस्टीट्यूट फ्रांसे डे मॉरिस में एकत्र हुए। मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनवेंद्र सिंह कहते हैं,
2: एल नीनो इज फॉर्मिंग इन पैसिफिक, दिस इज फॉर श्योर।
1: प्रशांत महासागर में एल नीनो विकसित हो रहा है, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये एक सकारात्मक चरण में विकसित हो रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि हमारे इलाके में समुद्र का तापमान ज्यादा रहेगा।
2: टुगेदर नाउ, बट वी हैव टू स्टिल वेट फॉर द कंफर्मेशन फॉर आईओडी टू बी पॉजिटिव और नॉट।
1: मॉरिशस जैसे देश के लिए ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु और समुद्र में होने वाले बदलावों का असर समुद्री संसाधनों, मछली पकड़ने और तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। जूनियर मंत्री फाब्रिस दाविद कहते हैं, ये सेमिनार हमें सचेत कर रहा है कि पैसिफिक महासागर में तापमान में बदलाव हिंद महासागर में चूना मछलियों के प्रवासन में बदलाव ला रहा है। ये एक आर्थिक और सामाजिक संकट है, जिसका असर सीधा खाद्य सुरक्षा, मछली मार और चूना उद्योग पर पड़ेगा। और ये बदलाव सिर्फ वैज्ञानिक मॉडलों और पूर्वानुमानों तक सीमित नहीं है। समुद्र पर सीधे निर्भर रहने वाले लोगों के लिए समुद्री परिस्थितियों में बदलाव उनके रोजमर्रा के जीवन में साफ तौर पर दिखाई देता है। मच्छरों के संगठन के सदस्य साकेल फुकिया कहते हैं, पानी ज्यादा गर्म हो गया है और मछलियों की संख्या और उनकी किस्म में भी बदलाव आया है। पहले लगून के अंदर ही कई तरह की मछलियाँ मिलती थी, अब ये कठिन हो गया है। इस अनिश्चितता के बीच तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस एक टापू देश होने की स्थिति को हल्के में नहीं ले सकता। मॉरिशस के लिए उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में बदलाव आने पर पहले से तैयारी करने, उसके अनुसार खुद को ढालने और सही समय पर कदम उठाने की क्षमता को मजबूत करना है।
0: मॉरिशस में हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में हो रहे बदलाव का असर आने वाले समय में हमारे इलाके पर भी पड़ सकता है। ये रिपोर्ट इसी पर आधारित थी। विवरण गीता सुरान का रहा। एल नीनो ये मौसमी घटना है जो मॉरिशस के मौसम और समुद्री स्थिति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इन्हें बेहतर ढंग से समझने और इनके संभावित असर के लिए पहले से तैयार रहने के उद्देश्य से आज ब्राजील में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि जनवरी 2027 से लागू होने वाली स्टेट एज पेंशन के तहत लोगों को कितनी पेंशन मिलने वाली है वे इसका अनुमान खुद लगा सकेंगे। इसके लिए आज SAP एस्टिमेट सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू की गई। सुनिए।
1: SAP एस्टिमेट्स आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है कि स्टेट एज पेंशन कैसे काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये अनुमान लगाने में मदद करना है कि पेंशन की उम्र पहुंचने पर किसी व्यक्ति को कितनी पेंशन मिलेगी। हालांकि

0: रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, लेकिन कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी अपनी पेंशन लेना शुरू कर सकता है। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो कहते हैं,
1: Nous prenons l'exemple d'un Jimoun qui naît en juin 1967. Ça veut dire qu'il gagne 60 ans en juin 2027. So, month of birth. Et que vous trouvez qu'il y en a l'option entre choisir de 60 ans à 70 ans. Et l'application est déjà finie, calcul. Quel âge a Jimouna éligible pour ce full SAP, c'est-à-dire sa pension qui a 15 555 roupies au dit. C'est 62 ans. Disons que sa personne-là, il décide pour atteindre ce full eligibility pour prendre sa pension. Et là, automatiquement, l'application peut dire à la personne quelle est l'estimation de ce SAP à l'âge de 62 ans quand il prend lit en 2029.
0: ये तकनीकी ऐप ICT मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय और समाज सुरक्षा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। ये ऐप लोगों के लिए इंटरैक्टिव बनाया गया है। ICT मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं,
2: Vous êtes capable accéder à ce site-là ou ça appela à travers mon passe ou même si je peine mon passe, vous êtes capable accéder comment je peux télécharger sa application là depuis store qui est servi, vous êtes capable immédiatement gain information parce que
0: सरकार की घोषणा के अनुसार स्टेट एज पेंशन की राशि में हर साल जीवन यापन की लागत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। जूनियर मंत्री कुगन पागापेन बताते हैं,
1: première fois dans la loi, le gouvernement il prend l'engagement qui chaque année pour une augmentation dans ou pension universelle. Ça veut dire que pension qui ben grand Jimoun gagné, il n'est plus pour un homme politique.
2: Nous peut espérer et nous peut faire tout pour que dans le mois octobre, nous réussissons à ouvrir l'application et nous commençons le process ben paiement qui bizar avant 2027 pour que l'air là nous qu'à faire paiement en 2027.
0: जैसा कि सरकार ने घोषणा की है, स्टेट एज पेंशन जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेगी। ये आप स्मार्टफोन पर या समाज सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम से आज फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने रस्मी मुलाकात की। ये मुलाकात पोर्टली स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में हुई। इस दौरान मॉरिशस और फ्रांस के बीच संबंधों और आपसी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सुनिए।
4: Après trois très belles années passées à Maurice, où j'ai eu le privilège et le très grand plaisir d'être ambassadeur de la République française ici, et à la veille de mon départ, je quitte l'île samedi, dans deux jours, je souhaitais passer, remercier le Premier ministre pour la confiance dont il m'a honoré et lui dire tout le plaisir que j'avais eu à travailler ici.
5: Qu'est-ce que vous retenez de ce passage à Maurice ?
4: Il y a eu de très beaux moments. Naturellement, la visite du président de la République, première visite depuis plus de 30 ans. Et puis, tout récemment, nous venons d'achever le déménagement de notre ambassade, qui est maintenant située à Telfair, dans ses nouveaux locaux. Ce sont là deux dates, deux événements qui marquent dans la vie d'un ambassadeur.
5: Finalement, vous quittez le pays avec une relation franco-mauricienne très réchauffée.
4: Elle ne saurait être meilleure.
3: सत्तर हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थायी आरोप आज पोटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हटा दिया गया। अदालत के अनुसार उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। हालांकि अदालत ने मामले की जांच जारी रखने की भी बात कही है। एमोशस के पूर्व प्रशासक सत्तर हाजी अब्दुल्ला को FCC की जाँच के तहत गिरफ्तार किया गया था। मामला एमोशस के करीब 3.6 मिलियन रुपये के एक संदिग्ध समझौते से जुड़ा हुआ है। और अब ये खबर जो काफ़ी चर्चा में है, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को एक महिला पुलिसकर्मी के साथ यौन व्यवहार के मामले में 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। उनका नाम 2024 में मैजिस्ट्रेट वर्षा बीफन दुर्गा की मौत के मामले

0: से भी जुड़ा हुआ था। डॉक्टर निशान मोहिपत इस फैसले के खिलाफ अपील करने वाले हैं, सुनिए।
1: 29 अप्रैल 2022 में ये घटना घटी थी। तब 29 वर्षीय एक महिला पुलिसकर्मी एक निजी क्लिनिक में गई हुई थी। डॉक्टर निशान मोहिपत कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले थे। इसके बाद इस महिला ने डॉक्टर पर यह आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उसके छाती को छुआ और कई बार चूमने की कोशिश की उसकी मर्जी के बिना। डॉक्टर मोहिपत ने अपने आप को निर्दोष बताया। फिर भी अपने फैसले में मजिस्ट्रेट ने इन घटनाओं के बाद व्हाट्सएप में हुए संपर्कों को ध्यान में रखा और साथ में पीड़ित महिला की बातें भी सुनी। डॉक्टर निशान मोहिपत ने अपील दायर करने का अपना इरादा जाहिर किया। डॉक्टर मोहिपत का नाम मजिस्ट्रेट वर्षा बिफन दुर्गा की मौत के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस महिला ने 2024 में 19 जुलाई को डॉक्टर की ओर से लिपोसक्शन करवाया था। इसके चार दिन बाद वो चल बसी। ऑटोप्सी से पता चला कि इंटेस्टाइन आंत के परफोरेशन से लगातार सेप्टिसेमिया के कारण उसकी मृत्यु हुई। डॉक्टर मोहिपत को 2025 के फरवरी महीने में मेडिकल प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर मोहिपत को मेडिकल डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया गया था। 2026 के अप्रैल महीने में मेडिकल काउंसिल ने इस बात की पुष्टि की कि इस सर्जरी के सिलसिले में उसे क्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए दोषी पाया गया, लेकिन बाद में 13 महीने के बाद इस सस्पेंशन को उठा लिया गया। मेडिकल काउंसिल ने तब एक गंभीर दोष सीवियर रेप्रिमांड लगाया था। मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर रिसोल ने कहा, उस वक्त मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन पद संभाल रहे थे। मामला पेश किया गया था, एक शिकायत मिलने पर जांच की जाती है। जांच के बाद ये पाया गया कि डॉक्टर से किसी तरह की गलती हुई है। मेडिकल काउंसिल की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। ये कदम किसी अवधि तक के लिए हैं। जब अवधि ढल जाती है तब वो फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी भेज सकता है। इसके बाद मेडिकल काउंसिल की ओर से फिर से जांच की जाती है और ऐसा किया गया भी, फिर ये निष्कर्ष निकाला गया। दूसरी तरफ डॉक्टर निशान मोहिपत के संबंध में अन्य दो शिकायतें भी दर्ज की गई है। 2015 में एक महिला मरीज ने उस पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। डॉक्टर ने अपने आप को बेकसूर बताया था। 2023 में एक अन्य महिला मरीज ने एक लिपोसक्शन के बाद हुई परेशानियों का खंडन किया था और मेडिकल काउंसिल को इस बारे में बताया था। इन दोनों मामलों में शिकायतें दर्ज की गई या फिर आरोप लगाए गए और सजा निर्धारित नहीं किए गए। डॉक्टर रिसोल ने आगे बताया, अगर जांच से पता चला कि डॉक्टर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है तो ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां हैं जब डॉक्टर जो कर रहा है वो लोगों के सामने उजागर हो गया हो, तब पब्लिक इंटरेस्ट जनहित के लिए मेडिकल काउंसिल की तरफ से डॉक्टर को सस्पेंड किया जा सकता है या वर्जित किया जा सकता है। अब से दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए जाने के 6 महीने की कैद की हालिया सजा के बाद मेडिकल काउंसिल को डॉक्टर निशान मोहिपत के पेशेवर भविष्य के संबंध में एक नया फैसला लेना होगा।
0: और अब अर्थनीति से जुड़ी ये खबर। अफ्रीकी विकास बैंक ने मॉरिशस से टिकाव और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक वित्तीय संसाधन जुटाने का आह्वान किया है। अपनी कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 में अफ्रीकी विकास बैंक ने 2027 में मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.8% रहने का पूर्वानुमान जताया है।
2: अफ्रीकी विकास बैंक के अनुसार 2026 में मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके बाद 2027 में अर्थव्यवस्था के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्तीय सेवाएं, व्यापार और पर्यटन आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। अफ्रीकी विकास बैंक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विनय अंटरास इन अनुमानों को लेकर कुछ आशावादी हैं। वे कहते हैं, हमारे देश को ज्यादा आय जुटाना चाहिए, टैक्स में सुधार, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच बेहतर साझेदारी के जरिए। अगर ऐसा हुआ तो कम अवधि में वृद्धि बढ़ेगी। अफ्रीकी विकास बैंक अगले साल 3.8% का अनुमान लगा रहा है। IMF के अनुमान से ये ज्यादा है। महंगाई को लेकर अफ्रीकी विकास बैंक ने 2026 में महंगाई बढ़कर 5.7% होने का अनुमान लगाया है। इसका एक कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का असर भी है। इसके बाद 2027 में महंगाई घटकर 3.9

0: प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में कई संरचनात्मक चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें श्रम बाजार में मौजूद असमानताएं और जरूरत के अनुसार कौशल की कमी, बढ़ती बुजुर्ग आबादी और सरकारी कर्ज का ऊंचा स्तर शामिल हैं। इससे सरकार के पास नीतिगत कदम उठाने की गुंजाइश सीमित होती है। पानी और ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ बंदरगाह से जुड़ी परिवहन व्यवस्था में भी बुनियादी ढांचों की कमी बताई गई है। ICT एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुधार की जरूरत है। मॉरिशस में आर्थिक बदलाव को तेज करने के लिए अफ्रीकी विकास बैंक ने सामूहिक प्रयास करने की मांग की है। अफ्रीकी विकास बैंक के कंट्री मैनेजर मुनो मुपोतोला कहती हैं, ठोस प्रगति के लिए मॉरिशस को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग जारी रखना पड़ेगा। साथ में विकास के साझेदारों, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और वित्तीय संस्थाओं के साथ विचारों को साकार करना चाहिए। इससे मॉरिशस आर्थिक बदलाव और होर को मजबूत करने में सफल रहेगा। बैंक ने वित्तीय व्यवस्था को बेहतर तरीके से जोड़ने, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने और सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की है। इसका उद्देश्य मॉरिशस की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करना है ताकि देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 350 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पड़ोसी तिब्बत को मिलाकर करीब 1500 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टान और कीचड़ का भी भारी मलबा नदी में जा गिरा। सुनिए,
0: नेपाल और तिब्बत की सीमा को हिला देने वाली इस प्राकृतिक आपदा के अगले दिन भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव दल मुश्किल हालात में अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं। टिमोर, ढुंचे और मैलुंग इलाकों में करीब 4000 सैनिक तैनात किए गए हैं ताकि घायलों को सुरक्षित निकाला जा सके और संभावित रूप से जीवित बचे लोगों की तलाश की जा सके। भारत ने पहले ही आपातकालीन सामान लेकर 2 कार्गो विमान भेजे हैं। इनमें टेंट, दवाइयां और राहत बचाव के उपकरण शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने शोक संदेश जारी करते हुए इस संकट की घड़ी में नेपाल के साथ भारत की एकजुटता दोहराई है। भारतीय अधिकारियों ने आपदा से निपटने की अपनी तैयारी भी बढ़ा दी है ताकि स्थिति और बिगड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। वहीं चीनी अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में 558 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। चीन भी पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्यों में जुटा हुआ है। ये जल प्रलय एक बड़े भूस्खलन के कारण हुआ जिसे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से जोड़ा जा रहा है। घनी आबादी वाले इस इलाके में भारी तबाही हुई है, खासकर कई दूर दराज के गाँव में। वैज्ञानिकों ने आगे और भूस्खलन या जमीन धंसने के खतरे की चेतावनी दी है। खासकर एक अस्थिर जलाशय के कारण खतरा बना हुआ है जो स्थिति बिगड़ने पर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकता है। ये त्रासदी एक बार फिर याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह पहाड़ी इलाकों की कमजोरियों को और बढ़ा रहा है जहां बर्फ तेजी से पिघल रही है।
1: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस, रोड्रिग्स और अगालिगा सैंपोंडों के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो ये चेतावनी कल सुबह के 4 बजे से लागू होगी। और समुद्र में तेज लहरों की चेतावनी भी जारी की गई है। दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर रहेगा। आज रात को और कल सुबह के दौरान देश भर में मौसम अच्छा रहेगा और दिन के दौरान पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रहकर तेज बरसात हो सकती है। तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। ऊंचे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शाही इलाकों पर 18 से 21, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों से सावधानी बरतने की मांग की जाती है, खासकर सड़कों पर और समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। और ये अतिरिक्त जानकारी आपको बता दें कि कल 28 अगस्त को सुबह के 5:22 से 11:04 पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्यास्त 6 बजे, सूर्योदय 6:22 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको धन्यवाद देते हैं। अब बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: रिवरसाइड फिनिक्स में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के महमूद निज़ाम मंगर इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात्रि के 7 बजे उनकी बीवी रोजिदा मंगर के मकान फिनिक्स से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7 PM। खुद कास्टेल कॉन्फुक्रोमे 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णावती बुधू पैदाइश नाम दुखी, लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ कल दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान कॉन्फुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:15 PM। पीटों पे अलावल सेंट क्वामे 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरिता ब्यादर सिंह की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम असागौ, लोग उन्हें सुनीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी बेटी विशानी ब्यादर सिंह के मकान सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले देवघाट की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। अवेन्यू ड्रेपर बेलगोज में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के देवदत्त सिंह बिहारी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मामू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी सुनीता बिहारी के मकान बेलगोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। गांधी रोड अर्नेस्ट फ्लोरोमी 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के विजय बाबूराम बंधु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मंगल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल सपहर 3 बजे उनकी पत्नी मालिनी बंधु के मकान गांधी रोड अर्नेस्ट फ्लोरो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। मिडिल रोड प्लेंडी पापामी 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के रामेश सनत की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीएफओ प्लेंडी पापाई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। काली रोड फोंजी साक में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की सुमेदा शिवरोहक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जवाहिर, लोग उन्हें कविता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल दिन के 10 बजे उनके पति विनोद सिहोरक के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर में ला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:27 हो गए हैं।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम में। जी हम बिल्कुल इस वक्त शाम के 6:31 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। नई सोच में एक नया विचार, एक नई उमंग के साथ हम यहां पर आए हुए हैं और हम आपको देने वाले हैं सरप्राइजेस। सो चलिए अभी के लिए रूबरू आपके नाम।

जी हम बिल्कुल, इस वक्त शाम के 6:36 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और नई सोच कार्यक्रम, हमेशा हम एक नया विचार, एक नई उमंग के साथ यहाँ पर आते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं बहुत सारे लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर रेडियो मनोरंजन की स्टूडियो पर हम बहुत ही दिल के साथ यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे एक बहुत बड़ी महान हस्ती जिनका नाम है तनाज ईरानी। और आप सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि मैंने उनको देखा था जब हम पांच जो टीवी सीरियल है वो हमेशा एक गाना गाती थी और दरवाजे खोलती थी और वहाँ से निकलकर कहो ना प्यार है, रहना है तेरे दिल में, और ऐसे बहुत सारे मूवी

0: मूवी, जब उनकी हंसी शुरू होती है तब हमारी आंखों में हमारे चेहरे पर भी एक नई सी मुस्कान आती है। तनाज ईरानी का हम दिल से स्वागत करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते तनाज जी।
1: थैंक यू सो मच, इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने मेरे बारे में दी है। एंड आई एम विशिंग ऑल यू पीपल ऑन रेडियो मनोरंजन, हाय देयर, एंड आई लव मॉरिशस, इट्स सो एक्साइटिंग टू बी हियर।
0: सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि जब मैं आपके टीवी सीरियल देखता था या फिर मूवी देखता था, कभी मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस तरह के एक सुअवसर मिलेगा कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। ये बहुत बड़ी बात है। सो तनाज ईरानी, आप एक ऐसी हस्ती है जहां पर बहुत सारे लोगों के दिल में आपने एक अमित छाप छोड़ा, खासकर जब हम पांच मूवी में दरवाजे खोलने से पहले जो गाना जब आप गाते थे वो गाना मुझे अभी तक याद है, और उसके बाद ऐसे सैकड़ों मूवी आपने, मतलब अपने जो अदाकारा है, अपने जो भूमिका है आपने निभाई है, एंड दैट वाज रियली कमेंडेबल। ये बॉलीवुड की दुनिया में है, लेकिन मॉरिशस में आने के पीछे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
1: वेल, इस वक्त मैं डेफिनेटली एक एक्ट्रेस के तौर पे आई हूँ, लेकिन इस बार एक नई मोड लेकर आई हूँ। शायद आप सभी को पता नहीं, लेकिन अब मैं एक लाइफ कोच भी हूँ।
0: Wow.
1: मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर हूँ, और उसी को लेके यहाँ पे फ्लो मॉरिशस के थ्रू मैं आई हूँ। और अश्मिता, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम दोनों ने सोचा कि अगर ये भी एक लाइफ कोच है, मैं भी एक लाइफ कोच हूँ, और हमारी जो महिलाओं की प्रॉब्लम है, औरतों की, यू नो, अक्सर वही प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो मॉरिशस में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो जैसे हम लोग बातें करने लगे तब हमने एक सोचा था कि क्यों ना हम एक कुछ करें टू हेल्प द वुमेन री राइट द स्टोरीज, क्योंकि अक्सर हम अपनी ही कहानी में इतने उलझ जाते हैं और अपने ही दुख भरी कहानी को इतनी लगाव हो जाती है हमें कि हम वो बदलना ही नहीं चाहते हैं।
0: हमको ये लगता है कि हमारी जिंदगी यही है,
1: यही है,
0: बिल्कुल।
1: सो यही ट्रैजेक्टरी, यही स्टोरी हम बदलना चाहते हैं इन द ब्यूटिफुल इवेंट दैट वी आर हैविंग ऑन द 1st of November कॉल्ड सेक्रेड मिरर्स।
0: ओके,
1: और ये बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है। ये मार्च में ऑलरेडी वो कर चुकी है, एंड नाउ दिस इज पार्ट टू।
0: Okay.
1: Because इतनी अच्छी रिस्पॉन्स आई है, लोगों ने बहुत उसे माना और बहुत अच्छी अच्छी टेक बैक हुई थी उस इवेंट से। सो आई हैव कम टू डू दैट। सो इस बार मैं जस्ट नॉट एज एन एक्ट्रेस आई हूँ, मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ, कुछ शेयर करने आई हूँ, कुछ सिखाने आई हूँ। एंड यू नो, आई फील एज एन एक्ट्रेस, व्हेन यू गो थ्रू सो मच, लोग उससे बहुत ही जल्द से प्रभावित हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि सिर्फ फेम और नेम सब कुछ होता है दुनिया में। लेकिन मैं एक्चुअली उन्हें बताना चाहती हूँ कि नेम एंड फेम इज नॉट द एंड ऑफ द गेम, इट्स, यू नो, इट्स योर इनर अलाइनमेंट, जब आप अंदर जाते हो। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अंदर जाना है सो दैट यू कैन लिव आउटसाइड पीसफुली।
0: क्या बात,
1: क्योंकि आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की तस्वीर होती है, लाइक इफ रिफ्लेक्शन, नॉट तस्वीर, रिफ्लेक्शन होती है। सो या, वी हैव कम टू डू दैट टुगेदर, एंड आई एम सो एक्साइटेड। अश्मिता
0: एंड अश्मिता, यस, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन ऐड, बिकॉज शी इज योर गुड फ्रेंड एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग एज ए टीम, सो व्हाट वुड यू लाइक एज फार एज फ्लो एसोसिएशन इज कंसर्न्ड?
2: So, like she said, you know, women are universal. What we feel, what we go through, our struggles, you know, our pain, our stories sometimes look similar. So she is here to bring, you know, her experience, what she went through, her own story, you know, and to help others who feel like, you know, there is something that we need to, you know, rewrite in your story. So we are here organizing, opening that platform on this 1st of November, Sacred Mirrors 2. And I do believe that Tanaz is the right woman to do that, because she believes in the power of the mind, the power of mirrors. And the why we're going to do that together with Flo Mauritius, and we are going to see you there, not just for the workshop, before the workshop and after the workshop.
0: तनाज, आप बॉलीवुड की दुनिया में आपने बहुत काम किया है, संघर्ष किया, बहुत सारी कोशिशें की, और इसके दरमियान आपको क्या लगा, खासकर अपने अपने हेल्थ को लेकर के, अपने इनर पीस को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर, स्ट्रेस, शूटिंग, बहुत सारे

0: टाइम ये कैसे आपने मैनेज किया?
1: एक्चुअली मैंने कभी प्रेशर लिया नहीं है, बिकॉज मुझे जो करना था इस दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में, मुझे बस एंटरटेन करना था, मुझे बस ये सपना जीना था. आई हैव नेवर टेकन इट सो सीरियसली दैट आई शुड ऐड प्रेशर टू इट.
0: अच्छा.
1: बहुत ही सरल तरीके से मैंने अपनी यू नो करियर को ग्राफ किया है. मैंने कभी दबाव में काम नहीं किया. ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये मूव करूँगी. यू नो आई हैव नॉट ट्रीटेड इट लाइक अ चेस गेम.
0: Okay.
1: शतरंज का खेल जैसे नहीं खेला है मैंने, जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्रेशर डालना है. आई फील आई हैव एंजॉयड माई लाइफ. जो भी काम आया मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे ये अच्छा लगता है, ये रोल भी अच्छा है, पैसा अच्छा है, चलो करो. और उसी दरमियान आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि यू नो एक यूनिवर्स का ऐसा रूल है,
0: मैनिफेस्टेशन,
1: या दैट ही विल टेक यू वेयर यू हैव टू गो. इट्स ओनली व्हेन यू फाइट अगेंस्ट इट. जब आप यू नो वो फाइट करते हो ना, तो जो आपकी जर्नी है ना वो स्मूथ नहीं जाती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और लोग यही समझते कि जिंदगी बहुत मुश्किल होनी चाहिए, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, यू नो हमें अब एक मकाम तक पहुंचने के लिए. लेकिन वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है.
0: बिल्कुल.
1: एक्चुअली लाइफ इज वेरी सिंपल, वी कॉम्प्लिकेटेड. सो
0: कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्माना, और ये जो ऋषि मुनि बहुत पहले कई कई सालों से उन लोगों ने ये कहा था, आप पर डेफिनेटली अगर आपके मन, आपके कर्म और आपके जो वचन है वो हार्मोनियसली सिंक्रोनाइज होता है, सो डेफिनेटली एक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन तो होगा ही.
1: यस.
0: सो हमारे यहाँ भारत की बेटी आई हुई है, भारत से एक ऐसी बेटी आई है जो अपनी छोटी माँ यानी कि मॉरिशस से मिलने आए हैं. सो भारत की बेटी के लिए इस गाने को हम यहाँ पर डेडिकेट करना चाहेंगे. रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर हम बढ़ेंगे एक छोटे से गीत के साथ, और फिर से बात करेंगे तनाज ईरानी के साथ.

0: जहाँ बिल्कुल रेडियो मनोरंजन इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम अभी के साथ। इस वक्त शाम के 6:49 हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है तनाज ईरानी, और हम बात कर रहे हैं क्यों आप लोगों को फ्लो एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहिए और क्यों ऐसे लोगों के साथ माइंडफुलनेस और साथ ही साथ जो पीसफुल एटमोसफेयर में रहने की एक जो ललक है उसको अपनाना ज़रूरी है। सो तनाज, अब आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि आने वाले नवंबर महीने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाले हैं, सो बहुत सारे लोग इसमें कैसे उन लोगों को एक कुछ एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट का एक उन लोगों को मतलब कुछ किसी चीज़ किसी लिंक को कंफर्म करना है, अब अगर वे लोग इस वर्कशॉप में शामिल होंगे तो कितने दिनों के लिए होंगे, उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं?
1: सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जो 1 नवंबर सेक्रेड मिरर्स 2 जिसकी इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपको इस इवेंट में आना है तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये इवेंट किसके बारे में और क्यों हम ये इवेंट रख रहे हैं। ये हर एक वो महिलाएं के लिए है जो अक्सर अपने आप से पूछती है कि एक्चुअली मैं अंदर से हूँ क्या। मेरी एक कहानी थी, मेरे साथ एक हादसा हुआ, लेकिन अब वो हादसा होके सालों बीत गए, लेकिन अब मैं कौन हूँ, क्योंकि हम उस हादसे के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी अंदर की जो यू नो बिलीफ सिस्टम है वो अक्सर बदल जाता है, और वो बदलते बदलते अक्सर हम अपने आप से ही छूट जाते हैं। इसलिए हम अक्सर यही पूछते हैं कि मैं हूँ कौन और मैं किस लिए यहाँ पे हूँ, कोई भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कहाँ पे जाऊँ, ये सारे सवाल लेके ये सारे आंसर्स मुझे कहाँ पे मिलेगा। अगर आपको एक कम्युनिटी की ज़रूरत है, अगर आपको एक सेफ स्पेस की ज़रूरत है जहाँ के आपके इमोशंस को सराहाया जाएगा, आपके इमोशंस के लिए स्पेस होगा, तो आप बिल्कुल आ जाइए इस इवेंट पे। उससे पहले भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, इवेंट पे आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा, उसके बाद भी हम आपका हैंड होल्ड करके आपको उस मकाम तक लेके जाएंगे जब आप खुद से यू नो आंसर मिलेगा एंड योर Completely aligned. अगर आपको इस इवेंट में आना है तो डेफिनेटली फ्लो मॉरिशस हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे यू नो अश्मिता विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप तनाज ईरानी अकेडमी मेरा भी पेज है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन हालांकि मैं मॉरिशस में रहती नहीं हूँ, सो ऑब्वियसली अश्मिता विल बी बेटर टू यू नो एनरोल यू एंड गेट यू इनसाइट। लेकिन ये वो हर महिला के लिए है, हर एक लेडी के लिए है जो अपने आप को एक पूरे घर में भी अकेला महसूस करती है और जिसके पास कोई नहीं है अपनी कहानी बताने के लिए, और वो जब अपनी कहानी बदलना चाहती है तो हम उसे एक कलम देंगे, हम उसे

0: एक अलग सोच देंगे जिसकी बदौलत वो अपनी जिंदगी बदल सकती है एंड हर वे ऑफ थिंकिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउट.
1: क्या बात है. ये जो नई सोच कार्यक्रम है, मुझे लगता है जिस तरीके से आपने एक नई सोच लेकर के इस शो में लेकर आए हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि ये जो फ्लो एसोसिएशन है वो क्या है. लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा. आप बाज जानते हैं, ईगल बर्ड.
0: yes, yes.
1: इसको पक्षीराज कहा जाता है. 40 साल के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बहुत ऊंचाई में जाते हैं. उस पर्वत में जाते हैं और अपने जो चोंच है फोड़ता है, तोड़ता है.
0: लेकिन
1: अपने
0: उसके पास एक चॉइस होता है.
1: एग्जैक्टली.
0: या तो वो मर जाता है, वो बाज, वो ईगल, या तो वो मर सकता है या सब कुछ छोड़ के, मतलब जिस तरह एक औरत सब कुछ छोड़ के ऊंचाई तक अकेले, द कीवर्ड इज अकेले, इस जर्नी में आप अकेले रहोगे और आपको तोड़ना है,
1: आपका
0: बीक, आपके क्लॉज,
1: सब कुछ खींच करके छोड़ना है और सर्वाइव करना है.
0: और जब वो दोबारा ग्रो होता है,
1: एक नई जिंदगी,
0: इट्स अ न्यू लाइफ. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट यू हैव ब्रॉट अप ओवर हियर. एंड बिल्कुल उसी तरह हम हर एक औरत से ये अपेक्षा करते हैं कि यू मस्ट स्टार्ट योर सेकेंड लाइफ. जो बीता है वो ठीक है, वो बीत गया है.
1: बिल्कुल.
0: अभी आपके पास एक चॉइस है. इफ यू वॉन्ट टू टेक द चॉइस, यू कैन चेंज योर लाइफ. If you don't want to take the choice, then it's up to you. अगर आप ready हो, अगर आप उस lesson को सीखना चाहते हैं, तो teacher है. अगर आपको नहीं सीखना है, the choice is yours.
1: Exactly. और जिस तरीके से आप महिलाओं का empowerment, महिला सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं, आप कर रहे हैं, ये तारीफ काबिल है. मुझे इतनी उर्दू नहीं आते क्योंकि मैं समाचार वाचक हूँ. ये प्रशंसनीय है. और इसी तरह से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं. रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से हम यही दुआ करते हैं कि जो पथ आपने लिया है उसमें आपका मनसा वाचा कर्मना वो बहुत ही सुलभ और सफल होंगे और ज्यादा महिलाओं को अपनी ओर आप मजबूतीकरण की ओर जा रहे हैं. आपको उन सभी महिलाओं की ओर से बहुत सारी शक्ति मिलेगी, तब जाकर के आप खुद अपने आप को कहेंगे अहम अस्मि योद्धाः न कदापि खंडितः. आप अंदर से एक योद्धा के रूप में हैं और आप इतने आसानी से टूटेंगे नहीं,
0: हार नहीं मानेंगे,
1: खंडित नहीं होंगे.
0: yes.
1: सो दोस्तों, थैंक यू सो मच. सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे जो मेन गेस्ट है, हमारे जो विशिष्ट अतिथि तनाज ईरानी से बात करने का हम लोगों को मौका मिला है. आप लोगों ने उसको बहुत ही इत्मीनान होकर के सुना है. 1 नवंबर के लिए फ्लो एसोसिएशन से जुड़े जो वर्कशॉप है, डेफिनेटली आप उसे मिस ना करिए. लास्ट वर्ड फ्रॉम यू अश्मिता.
2: I would like to see all of you. Please come out if you have any question before the event. Please feel free to reach us and I will see you in Tanaz on the 1st of November.
1: And the last word from you, Tanaz.
0: I am so happy to be here and I'm really looking forward to meeting all of you women. मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी और बहुत सारी कहानियां हम शेयर करेंगे.
1: क्या बात है. हमने के जितना जो दादी नानी चाची मौसी भौजी हवंजा ई बखत हमने के कार्यक्रम सुनत हवंजा त नहीं भूलैया जा पहल का नवंबर 2026 के हमनी लेकब आवब जा एगो बहुत ही विशिष्ट कार्यशाला वर्कशॉप तनाज ईरानी के संगे हमने के संगे जुड़ जाइए जा. एंड ऑफ कोर्स बहुत बहुत शाबाशियां हम फ्लो एसोसिएशन को देना चाहेंगे.
0: आहो.

जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त रात के 7:09 हो गए हैं। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर शो दिलों की आवाज़। और हमारे साथ जुड़ी थी तनाज ईरानी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी साथ। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त रात के 7:10 हो गए हैं, जहां पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं 402-80-70 पर, 402-80-70 पर, या फिर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 52-50-6200।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 7:21 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है, और ऐसे टाइम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त छोटी पोलोजी से हैं। उन्होंने कहा अगला गीत खासकर उनके भाई के नाम, जिनका नाम है आत्मा राम। और आज कल ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी भी बहुत हो रही है। सो हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं राघव की शादी हुई थी, और बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम ऑल द कैमरामैन, खासकर नील कंसकाराम, योनम आगवा। वी ऑल्सो हैव भावेश मोहता, हमारे भाई सत्यन भगत, और जितने सारे भाई कैमरामैन भाई हैं, और जितने सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत बहुत उनकी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं राघव और उनकी धर्मपत्नी के नाम। और ये गाना उन बहनों के नाम जिनका जिनकी शादी होने वाली है आने वाले दिनों में, या फिर कल होने वाली है, और साथ ही साथ रक्षाबंधन हम मनाने वाले हैं कल। जी हाँ बिल्कुल, कल हम लोग रक्षाबंधन मनाने वाले हैं, और ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। सो ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

जी हाँ दोस्तों, भाई बहन का जो रिश्ता है अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये कहते हैं ना कि एक ही कोख से आए हैं ये दोनों सिबलिंग, और ऑटोमेटिकली वो जो रिश्ता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे बायोलॉजिकल क्यों हो ना हो या फिर मुँह बोली बहन या फिर मुँह बोला भाई क्यों ना हो, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। जितने सारे भाई बहन हैं उन सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत मंगल कामना। और जो आने वाले गीत हैं हम उन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। वी डू हैव विक्रांत इस वक्त इबेन में है और अपनी जो नाइट शिफ्ट है उसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा गरम गरम कॉफ़ी पी रहे हैं खाने के बाद, क्योंकि पूरी रात तक उन लोगों को काम करना है और ऐसे टाइम पर वे हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। सो गाइस 5250620, डोंट फॉरगेट आवर नंबर, मैजिकल नंबर, आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहां पर चलाने की कोशिश करेंगे। यू मे ऑल्सो कॉल अस ऑन 4028070 402 80 70 पर।

जी हाँ दोस्तों, हमें क्यों बोझ इतना ज़्यादा उठाना चाहिए? कभी कभी हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ जो है इतनी खूबसूरत है, उसमें इतना ज़्यादा बोझ डाल, उसको उन चीज़ों को बोझ ना कहने के बजाय उसको चैलेंजेस कह सकते हैं। और जब भी हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं। वेन एवर हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती हैं, उसके साथ साथ जो संभावनाएँ हैं वो भी आती हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी चैलेंज हो, कोई भी सिचुएशन हो जो बहुत ही चैलेंजिंग हो, सो आप इसके बारे में सोचिए कि आने वाले दिनों में मुझे उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। सो प्रॉब्लम में ढंस करके अपने मतलब माथा पच्ची मत करना, बल्कि उसके बाद उसका मतलब आप सोल्यूशन जोन में चले जाइए, सोल्यूशन ओरिएंटेशन जोन में चले जाइए। आपको लगेगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन एक शक्ति मिलेगी, एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा, और उस मानसिक शक्ति के साथ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत आपको मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर इस वक्त रात के 7:51 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और जो अगला गीत है, स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे पूनम मोगन और रीटा की सुंदियाल के नाम, जो इस वक्त वे लोग लड्डू बना रहे हैं अपने भाई के लिए। कल रक्षाबंधन है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर में ला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। इस वक्त रात के 8:05 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। वंस अगेन नमस्कार और आदाब। 402-4675 पर फ़ोन करना मत भूलिएगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर एक मैसेज भी भेज सकते हैं ऑन 5250620। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे हम यहाँ पर चलाएंगे। और इस खामोश रात को और ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए रेडियो मनोरंजन ये गीत आप लोगों के नाम। जो लोग ड्राइव कर रही हैं आप लोग बस इस गाने को एंजॉय कीजिए एंड यू विल एंजॉय योर लोनलीनेस राइट नाउ।

ये गाना खासकर हम रानी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो सैंपिया के रहने वाली हैं, साथ ही साथ उनके पति हैं जिनका नाम है विक्रम, दो बच्चों के नाम और उनकी प्यारी और लवली सी बहना जिनका नाम है विद्या।

जी दोस्तों, रंग दे का जो गाना है सुनने के बाद बहुत सारे लोग उस रेडियो मनोरंजन के रंग में रंग गए हैं। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। इस वक्त रात के 8:22 हो गए हैं। अगला गीत स्पेशली हम मिस्टर डेविक के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, उनके दोस्तों के नाम, खासकर दौबारी और रिजो, और रिजो की छोटी बहन के नाम भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और साथ ही साथ वी डू हैव उनके जो पड़ोसी हैं जिनका नाम है अनिश, और उनके सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लवली टीचर जिनका नाम है मिसिज सिगुलाम फ्रॉम सनफुल सिटी स्कूल।

और ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे गुबिन योगिता के नाम, उनके दो बच्चों के नाम, खासकर दिलन और याना, साथ ही साथ उनके भाई जिनका नाम है रोशन और विनय।

0: जो मन मिया वो महफिल ही कैसी जहां दिल वालों के साथ साथ दिल जले ना हो। तुम दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए दिल वालों के लिए ये गाना खासकर, साथ ही साथ इरीना उनकी सभी कथक डांसर की टीम के नाम।

We do have Kapil इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ है श्वेता, उनके सभी दोस्तों के नाम और ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम जिनको ये गाना बहुत पसंद है।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रही हैं। वी डू हैव भाई आत्मा राम और साथ ही साथ हरीश, उन दादी प्रभावती और दादी कुशल ललिता। ये गाना आप लोगों के नाम

सो दोस्तों, आज का जो थर्सडे रात रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में तनाज़ ईरानी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वे यहाँ पर आई थी और बहुत कुछ उन्होंने हमारे साथ साझा किया, और साथ ही साथ आप लोगों के होने का एहसास भी हुआ, आप लोगों की फ़ोन कॉल्स मैसेजेस, थैंक यू सो मच इसके लिए। और जितने सारे भाई बहन हैं उन लोगों को हम कहना चाहेंगे हैप्पी रक्षाबंधन कल के लिए, एंड ऑफ कोर्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक अभी की ओर से नमस्कार, आदाब, टेक केयर, बाय।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day, all night.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: आज के रात एक बहुत ही खास रात्रि बा। आज 27 अगस्त बिफे के रात्रि है और ये बखत 9:02 होल बा। आप ये प्रोग्राम सुना था वह हमेशा के तरह रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और आज के दिन खास ये वजह से बा कि राखी के जन धूम बा वो एक सप्ताह से ही मचल बा और आज से ही राखी मनाए के शुरू हो गल बा। क्षमा करिए, ई देश में आज से ही राखी मनावे की शुरू हो गल बा और औपचारिक तौर पर तक काल मनावब जा, लेकिन ये खूबसूरत समा आप सब कोई के बहुत बहुत एक मंगल कामना प्रकट करत है जा। आप सब कोई के ई बहुत आपके जीवन में खुशी लाए। ई जन पहला गीत है बिस्वानी दीपा के आवाज़ में, भाई बहन पर आप सब कोई के नाम।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: भैया लावे तीन गोसारी तीनों जोलीबा। और ऐसा ऐसा गीत के आजकल मौसम चला था जहाँ पर भाई बहन खातिर तोहफा आनी, साड़ी आनी, और बहन भी भाई खातिर लड्डू आनी और अनेकों उपहार आनी। आज और कल जितना कोई भी ई पर्व के रंग में रंगल हवा जा, जितना कोई भी भाई बहन के होते हुए भी कोनो ना कोनो कारण से नहीं सकत हवा जा रक्षाबंधन मनावे, या फिर जैसे हमने के संस्कृति में बा परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो नहीं सक रक्षाबंधन मनावे, ढेर कोई ऐसा स्थिति से गुजरत हवन जा। और अभी हमने के फ़ोन पर बतियालन सुनीता जी भी बोलत हवन कि उनकर परिवार में तीन बरिस से मृत्यु होता और नहीं सकत हवन रक्षाबंधन मनावे, सब लड़का लोग तरस गल हवन सा राखी बंधाई खातिर। तो ऐसा ही एगो पर्व है कि वो चाहे बांधे होला रही चाहे बंधवाए होला रही, सबके मन में एगो बहुत उत्सुकता रहेला, एगो खुशी रहेला, एगो लोग के दिल में एगो कसक रहेला कि ई बंधा लेबा तो जान में जान आवेला। तो ऐसा में आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना, आप सब कोई के जीवन में सुख शांति खुशी बनल रही।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day.

आज जैसे सबको जाना था वजह श्रावणी मास के पूर्णा होती है और शिव के महिमा के आज विशेष गुणगान करल जाता तो ई मौका पर ई गीत चलल लीलो माथुर के आवाज़ में शिव के महिमा। अगला जन गीत चली सुनीता ननकू के आवाज़ में धरिला चरनिया तोहार। ई गीत के फरमाइश करत हवन शीला अपन पति सुरेन अपन सब लड़का बेटा बेटी दामाद सबको के नाम खास तौर पर सोनम और यौवन के नाम जे लोग अभी उनकर संगे हवन जा।

धरिला चरणिया त्योहार हे जगदम्बे भवानी ये गीत खास तौर पर शांता सुकारी जी से यम्मिल फॉरसाइड से अपन नाम करावत हवन। शांता सुकारी जी रोज हमने के सुनेलन और आज खास तौर पर काल जो रक्षाबंधन आप परिवार के साथ मनावे होला हवा। शांता जी आप उस सब कोई के नाम करत हवा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

संस्कृति हमारी है सबसे पुरानी। ये गीत के फरमाइश कर ले हवन फोंजुसाक से उमा जी, और उमा जी ये गीत अभिदानंद बिजन के आवाज़ में सुने चाहत हवन और नाम करत हवन अपन मुनि दीदी और देवी के नाम। और जितना कोई भी अपन संस्कृति के बहुत पूरा रूप से जिएला आप सब कोई के नाम ये गीत। और उमा जी बोलत हवन के आज संस्कृत दिवस है, तो संस्कृत दिवस के संदर्भ में आप ये गीत सुने चाहत हवा।

नदी किनारे सुनार पुलिया बतावेला पूर्णिमा फोकिरा के आवाज में ये गीत सुनने चाहतवन वाशेरी से कल्याणी जी और ये गीत कल्याणी जी खास तौर पर नाम करतवन गीता राधा किशन के नाम और फूलों के नाम अंजू और अमृता के नाम।

रात के 9:40 होल बा और हमने के साथ रहे होला बा अभी से 11 बजे तक। हर रात 2 घंटा के ये प्रोग्राम आपके पसंद पर तैयार होवेला, आपके पसंद पर चलेला और आज भी यही हुआ था। अगला जो गीत चली, हाय सुमिरन कर ले मेरे मना, बीती जाला उमर हरी नाम बिना। ये गीत सुने चाहता वन कथोबोन से प्रेमिला जी, और प्रेमिला जी ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन। जितना कोई भी अभी रक्षाबंधन मनावत हवा जा, जितना कोई भी व्रत के पालन करत हवा जा, पूरा महीना श्रावण मास के व्रत चलल और आज पूर्णमासी है। पूर्णिमा के जितना कोई व्रत धारण करत हवा जा, रक्षाबंधन के जितना कोई व्रत धारण कर ले हवा जा, आप सब कोई के नाम ये गीत करत हवन प्रेमिला जी। और जितना कोई ये बखत काम करत हवा जा और जितना कोई ये बखत तैयारी में लगल हवा जा लड्डू और मिठाई के, आप सब कोई ये गीत के आनंद भी उठावा।

संतोष महादेव की आवाज में ईगीत भजिर के घमा उगेला। ईगीत शांति जी तेयागूज से अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन, खास तौर पर अपन भाई के नाम बलराम जे पॉम्पलेमुस के पुलिस स्टेशन में पुलिस के काम करत हवन, और उनकर भगीना ओम अपन दागोचिया के जे हवन, और दागोचिया के उनकर पूरा मराठी परिवार के नाम।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षा बंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षा बंधन।

रात के 10 बजे था और एक घंटा के हमी के सफर बाकी बा एक घंटा बीत गया देखते देखते और भोजपुरी तड़का जहां पर आप सब कोई के फरमाइश पर ये प्लेलिस्ट फिर से बने रहा ये गीत जो अगला चले होला बा मच्छी मरवा जय हरलाल के आवाज में सुने चाह था वन भाई अब्बू जे अक्सर ये गीत के मांग करेलन

और हमेशा की तरह आप इगीत, अबू, अयाज, अफेज, सयार, जहीरा, रईस, काला चोटी, आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवा। तो चला मच्छी मरवा एक साथ सुनी जा।

रात के 10:08 होलबा और आप लोग के फोन कॉल्स, आप लोग के फरमाइश, आप लोग के मैसेज आई ले जाता ये खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जन गीत चली रक्षाबंधन के संदर्भ में ललिता गजाधर के आवाज़ में ये गीत सुने चाह था वन दादी पर भावती और ये गीत आप खास तौर पर आत्माराम भैया के नाम करत हवा जे बेलिया रहेलन और आप बोलत हवा कि आपके तबीयत उतना ठीक नहीं बा यही कारण है कि आप नहीं सकत हवा आत्माराम भैया के घरे जाए लेकिन आपके जितना प्यार जितना शुभकामना बा रेडियो के जरिए आप उन घर तक पहुँचावत हवा। उधर वाशिकी के कल्याणी जी अपन चार गो भाई के नाम अगला गीत करत हवन रक्षाबंधन के ही संदर्भ में और ये बखत जितना भाई बहन लोग हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कोई के भाई बहन के जो रिश्ता बा वो चाहे सगा रही चाहे खून के रिश्ता नहीं भी रही जोन अपनापन है जोन संबंध आपसी संबंध ज

जुड़ जाला ओकर खातिर कोनो खून के रिश्ता के जरूरत नहीं है। अभी देखा हमनी के और आपके ही संबंध कहाँ कोई के भेंट मुलाकात होल बा कबो, लेकिन जोन प्रेम आप लोग बरसावे ला जा, जोन अपनापन आप लोग दिखावे ला जा, जोन आशीर्वाद आप लोग घर में सा देवे ला जा, ओकर कोनो मोल नहीं बा। ता ऐसने ही जितना भी भाई बहन के खून के रिश्ता नहीं बा, लेकिन वो लोग एक दूसरे के इतना ही चाहेलन जा, इतना ही आदर भाव बा आप लोग के मन में एक दूसरे के प्रति। ता आप सब कोई के नाम रक्षाबंधन के गीत ललिता गजाधर के आवाज़ में।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

धना जी ना उजी के आवाज में धुआं उड़े ले चलल जाला, सिटी बजे ले चलल जाला, जवानी के रेल, ये गीत खास तौर पर बुआ शेरी से धनी जी के नाम।

का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

अगला जन गीत अभी चला था गीता गजाधर की आवाज़ में, माँ बाप के मोल, ये गीत के मांग आलबा फ्लिक ऑन फ्लैक से अनिता जी के ओर से। अनिता जी, ये गीत अपन पूरा परिवार, अपन सब दोस्त के नाम करत हवन, और रेजो मनोरंजन और रेजो मॉरिशस के पूरा टीम के नाम करत हवन। और हमेशा की तरह ये गीत आपके मनपसंद है, आप ये गीत हमेशा अपन गीत की फरमाइश करेला मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और चला आपके ई मनपसंद गीत सुनी जा। प्रोग्राम के अभी चले में और आधा घंटा बा, हमने के साथ रही और आधा घंटा तक, और फिर एकर बाद यही प्रोग्राम में हमने के मुलाकात फिर से हुई आवत बिफे के, और नहीं तो काल फजर के तब भेंटा भी करब सा हमारी धरोहर में। तो फिलहाल ये जो आधा घंटा बचल बा, अपन मनपसंद गीत सुनते रहा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. Zindagi ke anmol lamhe, Radio Mauritius ke saath.

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। A very good evening to all of you. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

हर पुराना गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों, शायद आपकी पहली मोहब्बत, बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ। इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए।

तो चलिए जी, हो सकता है कि फिलहाल आप घर पे आराम फरमा रहे हो, या हो सकता है कि आज थोड़ा सा ओवरटाइम किया है ऑफिस में और फिलहाल के लिए घर के लिए निकल चुके हो। तो चलिए मज़ा ले लीजिए इन खूबसूरत पुराने गीतों का। इस खूबसूरत सफ़र में बस आप हमारा साथ देते रहे। पुराने बॉलीवुड के वो एवरग्रीन गाने जो आज भी दिलों पर राज करते हैं, सिर्फ आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकाल लेना चाहिए और सुनिए वो गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल सुनहरे पल में लेकर आते हैं ऐसे कुछ प्यारे प्यारे गाने जो सीधे आपकी यादों को छू जाते हैं। तो यादों को ताज़ा करने के लिए बस तैयार हो जाइए मेरी जान, अगला गाना

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। म्यूजिक की असली खूबसूरती तब महसूस होती है जब एक पुराना गीत अचानक दिल को छू जाए। आज का हर नगमा आपको जिंदगी के किसी ना किसी खूबसूरत मोड़ पर जरूर ले जाएगा। ये है सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।
1: तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए

म्यूजिक कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे गीत हमेशा जवान ही रहते हैं और इसी खूबसूरत एहसास के साथ इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये जो सुनहरे पल हम लेकर आते हैं, यादगार बना देते हैं पुराने गीतों के साथ, आइए इन नगमों के साथ दिल को सुकून देते हैं। और अगला नगमा आप बस सुन लीजिए, आपके लिए ही है।

0: दोबारा।
1: तो चलिए जी, पुराने ये गानों का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी धीरे धीरे खत्म होने को है। और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए ताकि फिर आ सके आपका साथ निभाने के लिए इस एक घंटे के सफर में। आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: Mauritius.
1: 800 kilohertz. You're listening RM Free MBC Radio. Har pal aapke saath.
0: Radio Mauritius.
1: 800 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: Aapki khatti meethi yaadon mein.
0: You're listening RM Free Radio Mauritius.
1: 800 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
3: MBC Radio. Har pal aapke saath.
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
0: रेडियो मॉरिशस इज रेडियो मॉरिशस.
4: निंग हा अस्सलाम वालेकुम
1: किम चू मॉरिशस.
5: नमस्कार
6: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
7: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम.
8: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
3: एमबीसी रेडियो हर पल आपके साथ.
0: माय दिस इज रेडियो मॉरिशस.
4: निहाओ अस्सलाम वालेकुम
1: किम चू मॉरिशस.
5: नमस्कार
6: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
7: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम.
8: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
0: यू लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो.

0: Mauritius.
1: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: आपके हसीन रुख

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।